ताड़ा हर्ष्यो जुरैत होय निस्तारा रे मन मेरे तू हर्ष्यो जोर काज तुहारे नाही होर रहाओ। बड़े बड़े जो दुनियादार काहू काज नाही गावार हर का दास नीच कुल सुने तिसके संग खिन मह उधरे कोट मजन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुर ते बिदे जानी मन अपने मह फिर चेत बिंस जाहे माया के हेत हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम कै रंग जाके काम उतरे सब भूख जाके कामना जो हे दूत जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं डान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पुछे ना लेखा ताकि चाकरी करो विसेखा जाके ऊन नहीं काहू बात एक है आपे अनेक है पात जाकी दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे कर ताकि काल ना को चतुर नाही को मूड़ा ना को हीन नाही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस वड भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी त्यों जीवे ताकत नाम विसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिनस लाख सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग वतन बिस्ता महवास बिन सिमरन पय कुकर काम साकत बेसुआ पूत निनाम बिन सिमरन जैसे सीज छतारा बोले कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन गर्धब की न्याई साकत थान प्रेष्ट किराही बिन सिमरन कुकर हर काया साकत लोभी बंध न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत संग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाओ गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ रहाओ गुर कै बचन सुन रसन बखानी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर

आई मुठी जियो बिन गोर शब्द करारी बिन शब्द प्यारी कौन दुतार तारी माया मोह खुआई कूड़ विगुती तां पिर मुती सा तन मर न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रहे समाई नानक कामण तां पिर मुती सा तन मर न पाई नानक कामण सदा रंग राती हर जियो आप मिलाई ता मिलिया हर मेले जियो हर बिन कवन मिलाई बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाई गुर परम चुकाई ओ मिलिया माई ता सा तन सुख पाई गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाई कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामण हर बर पाया गुर कै पाई प्यारे गौड़ी महला तीजा पैर बिन खरी निमाणी जियो बिन पैर क्यों जीवा मेरी माई पैर बिन नींद न आवे जियो कापड़ तन ना सुहाई कापड़ तन सुहावे जा पिर पावे गुरमति चित लाइए सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर कै अंक समाइए गुर शब्द मेला तां पिर रावी लाहा नाम संसारी नानक कामण नाम प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे एहन सरंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे ओ मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुरमिल रही है अमृत गही है दुविधा मार निवारे नानक कामण हर बर पाया सगले दुख विस्तारे कामण पिरों भुली जियो माया मोह प्यारी झूठी झूठ लगी जियो कूड़ मुठी कूड़ियारी कूड़ निवारी गुरमत सारी जुए जरमना हारी गुर शब्द सेवे सच समावे विचों हो मैं मारी हर का नाम हृदय वसाई ऐसा करे सिंगारू नानक कामण सहे सिंह समाणी जिस साचा नाम अदारू मिल मेरे प्रीतमा जियो तुदबिन खरी निमाणी मैं नैणी नींद न आवे जियो पावे अन न पाणी पाणी अन न पावे मरिया हावे बिन पिर क्यों सुख पाईए गुर आगे करो बेनंती जे गुर पावे ज्यों मिले तिवै मिलाइए आपे मेल लए सुखदाता आप मिलया कर आए नानक कामण सदा सुहागण ना पिर मरै ना जाए गौड़ी महला तीजा कामण हार रास बेदी जियो हर कै सहज सुपाए मान मोहन मोह लिया जियो दुविधा सहज समाए दुविधा सहज समाए कामण वर पाए गुरमति रंग लाई ए शरीर कूड़ कुसत भरिया गलताई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजाए बिन भगती मैल न जाए नानक कामण प्रेम प्यारी विचों आप गवाए कामण पिर पाया जियो गुर कै पाई प्यारी रहन सुख सुती जियो अंतर उरतारी मिलिया प्यारी अनदिन दुख निवारी अंतर महल पिर रावे कामण गुरमति बिचारी अमृत नाम पिया दिन राती दुवदान मार निवारी नानक सच मिली सुहागण गुर कै हित अपारी आप हो दया करे जियो प्रीतम हत प्यारी कामण बिनो करे जियो सच शब्द सिंगारी सच शब्द सिंगारी हो मैं मारी गुरमुख कार्य सवारी जुग जुग एको सच्चा सोही बूझै गुर विचारी मनमुख काम व्यापी मोह संतापी तिस किस आगे जाई पुकारी नानक गुरमुख ठाउ न पाई बिन गुर हत प्यारी मुंद एणी भोली ने गुणिया जियो पैर अगम अपारा आपे मेल मिलिया जियो आपे बख्शणहारा अवगुण बख्शणहारा कामण कंत प्यारा घटघट रहा समाई प्रेम प्रीत भाए भगती पाई है सतगुर बूझ बजाई सदा आनंद रहे दिन राती अणदिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सा धन नौनिद पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरतै जियो क्यों कर दो तर तरिया जाए राम नाम कर बोहिथा जियो शब्द खेवट बिच पाई शब्द खेवट बिच पाई हर आप लंघाई इन बिद दो तर तरीए गुरमुख भगत प्राप्त होवै जीव त्या इउ मरीए खिन मह राम नाम किलब काटे भई पवित सरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पय मनूरा
स्त्री पुरुष काम व्यापै जियो राम नाम की बिद नहीं जानी मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मुए बिन पानी डूब मुए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं तात संसारी जो आया सो सब को जासी जी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवै राम नाम बखाने आप तरै कुल तारे नानक नाम से कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत साची जियो राम नाम बपारा राम नाम बपारा अगमै अपारा गुरमति तन पाईऐ सेवा सुरत भगत हे साची विचों आप गवाईऐ हम मतहीन मूर्ख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अणदिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुणदाता आप गुण काटन काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलहारी सचे विटों आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिरा जियो हर नाम ते आए मन्या हो दूर न जाहि पिरा जियो कर बैठिया हर पाए कर बैठिया हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सुपाए गुर की सेवा करी सुखाली जिसनो आप कराई नामो बीजे नामो जमे नामो मन वसाए नानक सच नाम वडियाई पूर्व लिखिया पाए हर का नाम मीठा पिरा जियो जान चाख चत लाए रसना हार रस चाख मुए जियो अन रस साध गवाए सदा हर रस पाई जा हर पाई रसना शब्द सुहाई नाम रत्याए सदा सुख पाई नाम रहे लिवलाए नामे उपजै नामे बिनसै नामे सच समाए नानक नाम गुरमति पाईऐ आपे लय मिल लवाए एह बडाणी चाखरी पिरा जियो तन छोड़ परदेश सदाए दूजै किनै सुख न पायो पिरा जियो विख्या लोभ लवाए विख्या लोभ लवाए भरम भुलाए इओ ओह क्यों कर सुख पाए विख्या लोभ लभाए भरम भुलाए ओहो क्यों कर सुख पाई चाकरी बडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताई नानक माया का दुख तदे चुकै जां गुर शब्दी चित लाए मनमुख मुगद गवार पिरा जियो शब्द मन ना बसाई माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाई बिन सतगुर पाए मनमुख आप गणाई हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जगला गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन बैराग पया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बधाते पुरखो बिधाता एक सरी तर क्यों मिला तुझे ओडीणिया कार करें सेवा शीस सारिंग ज्यों प्यासे।

के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जाग, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्याग, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के तर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता, ब्रह्म ज्ञानी के होए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन, ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी कर दस बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बह बह जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आव परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सब मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अध्यात्म, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाक, ब्रह्म ज्ञानी की मैं तो कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष बधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगलोकार, नानक ब्रह्म ज्ञानी आव निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तही। श्लोक और तारे जो अंतरनाम सर्व में पेखे भगवान, निमक निमक ठाकर नमस्कार है, नानक हो परस सगल नस्तार है, अष्टपदी मिथ्या न ही रसना परस, मन में प्रिय निरंजन दर्श, पार्तरे रूप न पैखे नेत्र, साधगित संत संघेत, करना सनय कहू के नंदा, सब ते जाने आप को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की बार न मन से करे, इंद्री जित पाई दोख से रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस, वैष्णो सोजे से ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए पहन, कर्म करत हो वे ने कर्म, इस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की चनी भाषे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर हो से कृपाल, आव दृढ़ औरा नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मनते बिन से सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सात संग पापा मल होए, इस भगवती की मति उत्तम होए, भगवंत की टार करे नितनीत, मन ते आपे बसंपरीत, हर के चरण निर्देव सावे, नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधय, राम नाम आत्म सोधय, राम नाम सारा पीवय, उस पंडित कह अवधे जग जीवय, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमत बुझे मूल, सुख मैं जाने स्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो चपे सी जत होए, सत्संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर और तारे, पास प्रेत मुक्त पाथर को तारे, सर्वरो का उक्त नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुत किते न पाइये कर्म, नानक ते स्मरे जस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का नाश, जिसका नाम सत रामदास, आत्मराम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तन पाया, सदा नित नित हर जान, सोदा दरगा परवान, अपने दास को आप कृपा करे, के दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आके आत्म तावे, जीवन मुक्त सौ कहावे, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भेस काटी, तैसा मान तैसा महान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जब जत कर राखे तैसा तैनाओ, आपे कर्ण करामन जोग, प्रपावे सोई फन होग, पसरो आप अयंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक पुस्तक कने नेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रचि बहु विध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पैतीर्थवासी, कई कोट मन परमे अदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट

बिना शक्ति दे सूद नहीं आवने पूहे होए होए आज बेईमान करियो इन्ना नाल गाजिया गाजिया रखे याद आने वाली संतान याद रखा

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
3: Omkar Satnam Karta Purukh Nirbho Nirvair Akal Murat Ajuni Saibham Gurprasad Sarvasilam Amangsilam Sarvapavane Mampavanam Sarvakartave Mamankarta

0: को मन ला अपने विच जाती मां ना कर दूसरे दिलिंदा एदे नाल मन मैला हुंदा है और ए बाणी दा जबान दा बहुत वड्डा दोख है बहुत वड्डा जो है पाप है। मुख्तसर मैं अर्ज करा ए दस पाप ने चार जबान दे ने तीन मन दे ने तीन तन दे ने परमात्मा दे नाम दे जैसे सुरत जुड़ जाए ये दस पाप किस तरह मिट जाते ने इस तरह बह जाते ने जिमें हड़ दे उते आया दरिया किनारे दे दरख्तों नू बहा के लै जाता है कि जपे होया नाम सारे गुनाहां नू लै जाता है मिटा देता है और हिरदा शुद्ध हो जाता है पावन हो जाता है। कितनिया विचारा इस वक्त प्रवान करनिया धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बख्शिश करन सुरत शब्द नाल जुड़े और अपने सारे पाप गुनाह धुल जान दृष्टि अमृतमयी हो जाए बोल अमृतमयी हो जान सोचनी अमृतमयी हो जाए जीवन अमृतमयी हो जाए। सारिया का धनवाद मुखी सजना का भी धनवाद फुल चुगदी चवा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।
1: केलगू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नू होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मेरे दे नाम कर अपने तेरे अपने शरण राख प्रभु दासे गुरु प्रसाद किने ले जाते सुनो विनो प्रभु मेरे मीसा चरण कमल वस है मेरी चीता

हजूर पास्टर तंगुरु असर सर जी प्यारे सतगुरु ये फरमाते ने तुसी अपने आप से दया करनी अपने आप से तरस करो जी अपने आप से तरस करो इस बॉडी में फंसे हुए हो कह दो अपने आप से तरस करो छुटने का यत्न करो मैं तुम छुड़ाने वास्ते आया इस चीज एवें करी मंग ले मैं तुम देरी तो परे करने वास्ते आया हाँ मैं तुम अमृत देने वास्ते आया हाँ तुम्हारी कितने मृत्यु नहीं होगी तुम मृत्यु मंडल में रह रहे हो ये गुरु कलगिया वाले सिख शब्द ने मैं तुम मुक्त करने वास्ते आया हाँ तुम अपने आप से दया करो फसे हुए हो अपने आप से तरस करो ये जीव फसया हुआ नहीं है मैंने तो गल बड़ी चंगी लगी मैं तो उस दिन का धन गुरु अर्जन साहब धन गुरु अर्जन साहब कर बैठा कि हे मेरे मालिक ना तीर्थों से जाने की लड़ ना कोई पढ़न की लड़ ना कोई नीति शास्त्र विचार की लड़ ना कोई किसी भी पढ़न पढ़ाने की लड़ नहीं किसी भी तीर्थ से जाने की लड़ नहीं कुछ भी करने की लड़ नहीं केवल इस यत्न करने की लड़ है कि देवी तो परे हो जाए मनी सिंह शहीद होया आप सब जानते हो शहीद करने वाले ने पूछा मनी सिंह तेन की पीड़ नहीं होंगी मनी सिंह पहले तो चुप कर रहे सिख अपना राज दसदा नहीं क्योंकि अंदर गुरु होंगे जदों उन्होंने बड़ा दर्दनाक वाक्य है बंद बंद कर दिता जा रहा है कटने वाले को तरस आ गया है मनी सिंह तेन पीड़ा नहीं हो रही दस के सही मनी सिंह कहता मैं दसा मैं शरीर नहीं हाँ मैं शरीर नहीं हाँ मैं मिट्टी हाँ तुसी मिट्टी नू कट रहे हो भाई जमीन भी को किला ठोक देवे जमीन नू को पुट देवे जमीन नू को दर्द होता है मैं मिट्टी हाँ तुसी मैं मार नहीं सकते मैं सत वेता हाँ मैं गुरु के चरणों बैठा हाँ मेरा गुरु अजर है अमर है सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए तो अपना शिकुर है सब मेरे समाए ताते ऐसा सतगुरु सब समाया हो साडे अंदर है खोज लो भाई अपने आप से तरस करो देवी तो परे होने का यत्न करो गुरु अर्जन साहब जी ये समझा रहे हैं आस करते हैं आप जरूर समझ गए हो किधरे जाने की लोड़ नहीं प्रेम नाल ये मन के चलो कि मैं गुरु पुत्र हाँ मैं गुरु नानक का पुत्र हाँ ये मन के चलो मैं गुरु नानक का पुत्र हाँ ये मन के चलो मैं स्त्री नहीं हाँ पुरख नहीं हाँ कोई नीवा उच्चा भी नहीं हाँ गरीब अमीर भी नहीं हाँ मैं छोटा बड़ा भी नहीं हाँ आत्मा छोटा बड़ा नहीं होंगे स्त्री पुरुष नहीं होंगे गरीब अमीर भी आत्मा नहीं होंगे मैं तो गुरु पुत्र हाँ गुरु नानक का बेटा बन के जियो गुरु नानक का वरदान बन के जियो इतों तक के श्री चंद लक्ष्मी दास तो उपर होके जियो गुरु का अंग बन के जियो गुरु का अंशन बन के जियो आप जानते हो बीबियां पगां बन लेंदियां ने साडे भी इंडिया च संत ने बीबियां नूं पगां बना के कहिंदे ने दसम पातशाह दर्शन करा दें मैं क्या भाई दसम पातशाह तेरे अधीन हो गए मेरे साहिब तो किसी के अधीन नहीं है ऐसा नहीं हो सकता वो बीबी मेरे को आई मैं क्या बीबी गल एको ही है जे तू पग बनी है ना कि फिर गुरु पुत्र बन के रही बस दूजी गल असी नहीं जानते जे तू हम पग बन लीए केसरी बन लीए तो गुरु पुत्र बन के रही हूं स्त्री बन के ना रही हूं वाहेगुरु नाम बोल रही तू गुरु नानक का पुत्र है इस तरह जीवी गुरु अंग संग रहेगा शरीर नू असी किवें भी रख लीए कोई फर्क नहीं पैंदा शरीर नू छोड़ना है छोड़ना जिस तरह सर्प कुंज छोड़ देंदा है कुंज जहर नहीं छोड़ता एदा तुसी शरीर नू छोड़ जाना वाहिगुरु नाम ना छड़ना ये सत है गुरु अंग संग होएगा हजूर कहने अक्षर तीर सगल पुन दीन दया परवान अपने आप से तरस करो जे तुसी शरीर विच बंधे हुए हो मैं बंधिया हुए का होर की जिक्र करा बहुत समा आपके चरणों च नहीं लाँगा कई तो स्त्रियों के गुलाम ने कई नौकरां दे गुलाम ने कई माया दे गुलाम ने कई पुत्रां धीआं दे गुलाम ने कई गुरद्वारियां दे गुलाम ने कई प्रबंधां दे गुलाम ने कई अपने मसाए तो उन्हां दे गुलाम

जय प्रसाद तेरे अनक छिद्र डाके, ओदी बख्शिश ने पता नहीं तेरे कितने गुनाह छुपा के रखे, लोगों नु कुछ नहीं पता, पर पड़दा परमात्मा नहीं पाया। ए भी मैं सतगुरु डाक लिया मोहे पापी, पता नहीं मेरे कितने पापा नु गुरु ने डाक लिता है, लोगों नु कुछ पता ही नहीं, जगत नु कुछ पता ही नहीं, और हर एक मनुख दे पाप ते हैं कुछ गुस्ताखी वाल, और हर मनुख ने कुछ छुपाया है, और जिहड़ा छुपाया उस सीने दा बोझ बनता है, भार बनता है, जिन्ने सिर तक उतरे ना मिटे ना बोझल रहिंदा है। मेरी जिंदगी दा एक तजर्बा मैं समाप्ति करन लगा, पर अर्ज करा, जोधपुर दी गल है, कोई 25 साल पुरानी, उत्थे मैनू एक सज्जन मिले जो मेरा क्लास फैलू मेरे नाल पढ़दा रहा, सी बचपन दा दोस्त, बचपन दी दोस्ती च गहराई बड़ी आउंदी है, बाल सखा मित्र, 25-30 साल बाद मिलना होया, रेलवे दा ड्राइवर सी, इंजन ट्रक चलांदा सी, पता जद उसनू चलिया मैं आना है जोधपुर दे, हफ्ते दी उसने छुट्टी ली, हफ्ता दास ने रहना, सुनिया सी उसने जिहड़ा मेरा क्लास फैलो है वो कथा करदा है, मिलना 25-30 साल बाद होया, सारा सारा दिन कोल बैठा रहिंदा सी, बचपन दियां गल्लां चलदियां, जद तीजा दिन होया ना ते मैनू कहन लगा मस्कीन जी, मैं थानू अपने राज दी गल दसदा, अज तक मैं अपनी पत्नी नू नहीं दसिया, बच्चियां नू नहीं दसिया, मां बाप नू नहीं दसिया, किसे रिश्तेदार नू नहीं दसिया, भैण भरा नू नहीं दसिया, थानू दसदा, तुसी मेरे बचपन दे दोस्त, मेरे राज दी गल है, लेकिन एक बेनती, तुसी किसी नू दसना नहीं, वादा करो। मैं कहा मित्रा, अवल ते मैं किसी दी राज दी गल सुनदा ही नहीं, ते ना मैनू सुनाई, क्यों? मेरा ए अनुभव है, जो कुछ मनुख ने छुपाया है वो चंगा नहीं आउंदा, ते तेरा चेहरा मेरे सामने बड़ा सोहना है, तू शराफत दा मुजस्मा है, तेरियां बचपन दियां यादां मैनू प्रभावित कर दियां, हुण जब तू राज दी गल दसेंगा तो तेरा हो सकदा चेहरा मैनू चंगा ना दिखाई दे, ना दस, मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मेरा अनुभव है जो मनुख ने छुपाया वो ठीक नहीं है, गुणा नू ते मनुख हथेली ते लई फिरदा, मैं ये कीता, मैं ये कीता, मैं ये कीता, औगुणा नू छुपांदा और की। मैनू कहन लगा जिहड़ा राज मैं अज तक किसे नू नहीं दसिया, थानू दसन लगा कि तुसी इतना ही वादा नहीं करदे कि किसे नू नहीं दसोगे। मैं कहा मित्रा पहले ए दस, राज तेरा है ना? हाँ। कहिंदा मेरा है। ते मैं कहा तू ही छुपा के नहीं रह सकदा, ते तेरा राज मैं किस तरह छुपा के रखा, कुछ ते अकल कर, कुछ ते सोच, मैं वैदा भी नहीं कीता, उन्हें अपना राज दसिया, ते दसण तो बाद मैनू कहन लगा मस्कीन जी हुण मेरा हिरदा हौला हो गया। मैं कहा हुण मेरा हिरदा भारा हो गया, तू अपने अंदर दा पत्थर कढ़ के मेरे अंदर पा दिता और की। मैं कहा तेरा चेहरा कुछ होर दिसण लग पे, तू ये भी कर सकदा, तेथों ऐसा भी होया है, जो जो भी मनुख ने छुपाया वो ठीक नहीं होवेगा, वो ठीक नहीं है, ये भी मैं कर दे, और हर एक मनुख ने कुछ ना कुछ छुपाया है, और यकीन जानो परमात्मा ने भी पर्दे पाए हुए ने, जय प्रसाद तेरे अनक छिद्र डाके। आत्म अभ्यासियां नू इस गल दी समझ आउंदी है, हे प्रभु जे तू पर्दे ना पावे ते परिवार दे नाल भी बना के रखनी बड़ी औखी, जे सब कुछ आउट हो जाए, ते तेरी मेहर तेरी बख्शिश, जय प्रसाद तेरे अनक छिद्र डाके, जिदी बख्शिश ने पता नहीं कितने गुनाह तेरे डाके रखे ने, कितने छिद्रां नू जो है डाके रखे आया है।

होए गारी माई, हर दर्शन बिन रह न जाई राव, प्रेम न चाखिया मेरी चित न बुझानी, दया सो जोबन तन पछतानी, अजय सुजागो आस प्यासी।

फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे तां कामण कंतै मन भावे कहत नानक कह पाव का करे सिदार सद ही से जैर वै पतार आसा मैला पहला ना किसका पूत ना किसकी माई चूठे मोए परम पुलाई।

कोई, गुर प्रसादी दुर्मत कोई, जह देखा तह एको सोई, कहत नानक ऐसी मत आवे, ताको सच्चे सच समावे, आसा मैला पहला दुख दे। तित सरवरण भई ले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेतस मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी।

जय कर करते कीरत होए सो कर रास वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वे।

0: भूख फूक तीरथ किए, जोगी जति जुगत में रहते कर कर पगवे पेक पए। तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश गए, पीर पे कांबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पे। साज सहज सुख रस कष्ट जियले, काकड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश भये। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत तोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जाप कैसी। आस्था हर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मनवासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कत्ती पापी पखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। ओंकार सतगुरु प्रसाद। आशा घर छीवा महला पहला,
1: मन मोती जे गहना होवे,
0: कौन होवे सूतदारी, खिमा सिगार कामन तन पहरे, रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही, तेरे गुण हो है नावरी राव, हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, तीरज तड़ी बंधावे कामन, श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले, काया सेज करे, ज्ञान राव जब सेजे आवे, ता नानक भोग करे। आसा महला पहला,
1: कीता होवे करे कराया, तिस क्या कही है भाई,
0: जो कुछ करना तो कर रहा, कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला पुद पावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाओ,
1: किरत पया परवाना लिखिया, बाउर हुकुम ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सकता है कोई। जे तो दरगे बहुता जोले, नाव पवे बजारी, सतरंज बाजी पक्के नाही, कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना, ना को मूर्ख मंदा, बंदी अंदर सिफत कराए, ता को कही है बंदा। आसा मेला पहला,
0: गुर का शब्द मने में मुंदरा, चिंता किमा हंडावो, जो कुछ करे पला कर मानो, सहज जोग निज पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत में जोगं, अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस पोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं, सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन सूरे नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विपूतं, हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया, नाना वर्ण अनेकं, कहो नानक सुन परखर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला,
1: गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है,

सहज रंग रच रहा एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साज प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद चूसे पाव करे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुकुट वैकुंठ करे क्या सिफ्ती रखता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर कर जोगी जीवा अमृत धार है आपका महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई करलाने तैकी दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै वगे खसमे सा पुरसाई रतन विगार विगोए कुत्ती मोया सार न काई आपे जोर विचोड़े आपे वेत तेरी वड्याई जे को नाउ तराए वड्डा साज करे मन भाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जे ते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाने राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडभाग गुर के शब्द सच्चे बैराग हर दर्शन वरते वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर के दर्शन मुक्त गत होए साचा आप वसे मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर के दर्शन सदा सुख होए गुर के दर्शन मोक द्वार सतगुर सेवे परवार साधार निगुरे को गत काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर के शब्द सुख शांत शरीर गुरमुख तां तो लगे न पीर जम काल किस नेड़ ना आवे नानक गुरमुख साज समावे आसा महला तीजा शब्द मुआ विच्चों आप गवाए सतगुर सेवे तिल न कमाए निर्भव दाता सदा मन होए सच्ची बाणी पाए पाग होए गुण संग्रहो विच्चों अवगुण जाए पूरे गुर के शब्द समाए रहाओ गुणा का गात होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम बखाने साची बाणी सूचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण अमोलक पाए आ जाहे मन निर्मल साचे शब्द समाए सेवड पागी जिन नाम से आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए आसा महला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई किरी विचने मेल मिलाए आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊंची बाणी ऊंचा होए गुरमुख शब्द वखाने कोए विण नावे दुख दर्द शरीर सतगुर पेटे ता उतरे पीर बिन गुर पेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए गुर कृपा ते हर वस पाए नानक नाम रते गत पाए आसा महला तीजा

लाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखन आखे बके सब कोए, आपे बख्त मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया, सतगुर से वैसो जी होए, दूजे पाए न लागे कोए, मूल लागे से जन परवान, अंदिन राम नाम जप हृदय, गुर सबदी हरे को जान, रहाओ, डाली लागे ने फल जाए, अंधी कमी अंध सजाए, मन मुख अंधा ठौर न पाए, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए पचाए, गुर की सेवा सदा सुख पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदरणहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत पर हर जल नाया, दुरमत मैल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उत्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एठों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विस्ता का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मैला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोय समकर जाए, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को पाए न पाए, करणी कीरत नाम वसाए, आपे देवे तिल न पाए, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि पूरा करे वपार, बिन राशि वखर पल्ले ना पाए, मन मुख पुला जन्म गवाए, सतगुर सेवे सो लाला होए, उत्तम जाति उत्तम सोए, गुर पौड़ी सबदू ऊंचा होए, नानक नाम वडाई होए, आसा महला तीजा, मन मुख झूठ हो झूठ कमावे, खसमे का महल कदे न पावे, दूजे लगी परम फुलावे, ममता बांधा आवे जावे, दोहागनी का मन देख सिगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, झूठ मोह पाखंड विकार, रहाओ सदा सुहागन जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिगार बनावे, सेज सुखाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे, सा सुहागन सा

बसाए अंतर निर्मल अमृत सरनाए सदा सूचे साथ समाए हर प्रभु वेखे सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जा जाओ तै वेखा सोए गुर बिन दाता अवर न कोए गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए पूरे गुर के सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने जम्मन मरना है संसार मन मुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा बहुकूर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माय समावे सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पगत दृढ़ाए पाणा मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आसा मैला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुर गोविंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुर ते साच समाए जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेष रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं ना जाए पूरे सतगुर दित्ती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाई जो किछ करे तो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए न पाए जिन कह पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए नावे जेवड होर पर नाही कोए जिसनो बख्शे साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा मैला तीजा नृत करे बहु वाजे बजाए त्यों मन अंधा बोला है किस आख सुनाए अंतर लोभ परम अनल वाओ दीवा बले न सोजी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच होए पाखंड भगत नृत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के बचन भगत खाए पाए हर जियो आप वसे मन आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर क्यों चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा कर अठवां काफी मैला तीजा ओंकार सतगुर प्रसाद हर कह पाणे सतगुर मिले सत सोजी होई गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन वसे सां सदा सुख होई रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है पाई है गुर विचार बिन नामे जम के वस है मन मुख अंध गवार हर कह पाणे जन सेवा करे बूझे सच सोई हर कह पाणे सालाई है पाणे मने सुख होई हर कह पाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई।

किसी तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किसी तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तरह हर रया समाई, हम हर क्यों तरह किया मेरी हर टेक। मैं हर दिन पथ तरा अवर न कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक। राव जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ नाहे। ये सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी। जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे। जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरा धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे। आसा मैला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया। गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो। गुर अमृत बहना रहा, मैं मन तन प्रेम महा बैराग। सतगुर पुरख पाया वड पाग, दूजे पाए पवे बिख माया। पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया। गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया। पाई नीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसदत गुर प्रसादे। ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

पति कहावे तिन बहुत फल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते पक्षी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुबाए। त्रै गुण मोहे मोया आकाश, हम सतगुरु राखे देकर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास। जो तू कहे सोकार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेरनावा। आसा मैला पंजवा, सत्तू ते तिरकी नीवाक। देर जिठानी मोई दुख संताप, करके जुठेरे की

तै गुण त्याग दुर्जन वीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने। सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया। महा आनंद गुर शब्द विचार, प्रैसु राति तन सुहागन नार। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार। जन्म न मरे न आवे न जाए, हर सेती ओरे समाए। आसा मैला समझवा निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। जित गृह वसे सो गृह सो बावंता, गुरमुख पाई किने विरले जनता। सो करणी कामन गुर मिल हम पाई, जज काज परछाए सुहाई। रहाओ जिचर वसी पिता के साथ, टिचर कंत बहु फिरे उदास। कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आनी कर में पा सर्व सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगर स्वरूप। इस पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परवार माय श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। तन सो ग्रहो जित प्रगति आए, जन नानक सुखे सुख रिहाए। आसा मैला पंजवा मता करो सो पकन न देई, सील संजम के निकट खलोई। वेश करे बहु रूप दिखावे, गृह बसन न देई वक वक करमावे। कर की नायक कर वासना देवे, जतन करो उर्जाए परेवे। रहाओ तुर्की तेजी आई आमर, नौखंड जीते सब थान तनंतर। पट तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौ मीता हो कह कह जाई। उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक पे अचिंता। कर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

इतिये मता किछ करो पाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया, दुश्मन दूत मोए सुख पाया। रहाओ सतगुरु मोह को दिया उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश।

तेरी संसार तेरे सेवको किसकी कान साचक पूला फिरे बेबान तेरी वड्याई कहीं न जाए जह कह रात लह गल लाए नानक दास तेरी शरणाई प्रभ राखी पैग वजी वधाई आसा मैला पंजवा परदेश चाग सौदे को आया वस्त अनूप सुनी लभाया गुण रास बन पल्लयानी देख रतन यो मन लपतानी सावा पारी द्वारे आए वखर काडो सौदा कराए रहाओ साहे पठाया साहे पास अमोल रतन अमोला रास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल कीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हत कै फटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सा पूरे बख्शिंद सौदा गुरमुख ने गिरले।

चज अचार किछ विद नहीं जानी, बा पकर प्रैसे जयानी। सुनबो सखी संत हमारो कियो लो खसमाना, कर मस्तक पार राख्यो पर अपना क्या जाने यो लोक अजाना। रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोयो, कंक मिलियो मेरो सब दुख जोयो। आंगन मेरे शोभा चंद, निस बासुर प्रसंग आनंद। बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल। प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कान। सब खुशियां सदा रंग माने, नौनिध नाम गृह में तृप्ताने। कौ नानक जो पिरे सिगारी, फिर सुहागन संग पतारी। आसा मेला पंजवा, दान दे कर पूजा करना। लैस देत उन मुँह कर पढ़ना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना। जित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई। निरपराध चित में बुरे आई, राव अंतर लोग फिरे हलकाए। निंदा करे सिर पार उठाए, माया मूठा चेते नाहीं। पर में फूला बहुती राही, बाहर पेख करे कनेरे। अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आप न बूझे। ऐसा ब्राह्मण कहीं न सीजे, मूर्ख बामन प्रभु समाल। देखत सुनत तेरे है नाल, कहो नानक जे होवी पाग। मान छोड़ गुर चरण लाग, आसा मैला पंजवा। दुख रोग पए गत संते, मन निर्मल हर हर गुण गा।

पावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन तेखत रहे अभाए जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकरे ने चल साधु पाए सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय।

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले ले सिदावे अनहोंदा अजगर पार उठाए निंदक अग्नि माहि जलावे। परमेश्वर के द्वार है जे होए बतीते सो नानक आप सुनावे। भगत जना को सदा आनंद है हर कीर्तन गाए।

विचार सांझे करना चाहना गुरबाणी की कसौटी नाल। गुरु कहते ने तखत एक है, कल दे लफ्ज नूं फिर दोहरा देना, जे इमारत करके तखत होवे, किसे अस्थान धाम करके तखत होवे, तां हुण पंज ने पहला चार सन, अज तों भी 25 साल पहला 30 साल पहला चार ही सन। राष्ट्रीय जिक्री चारे धामां दा जिक्र आउंदा सी, संत फतेह सिंह जी दे समय जदों उन्हां दा पैरा सी श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान दे रूप विच, क्योंकि पहले तो ही राजनीति दा कंट्रोल धर्म ते रहा, साडा दुखांत अज इस स्थान तक पहुंचन दा ए है। जिवें भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत गल आखी सी, जदों तक राजनीति दा पहरा धर्म ते रहेगा दुखांत वापरेंगे, अन्याय होवेगा। कल दा मेरा विषय भी हो खैर, चार धाम सन, चार तखत सन, संत फतेह सिंह जी दे अकाली दल दे प्रेजिडेंट दे पीरियड विच उन्होंने उपराला किया, क्योंकि वह आप राजस्थान दे उस खिते दे रहने वाले सन, उस खिते नूं इंपॉर्टेंस देने वास्ते उन्होंने गल मारी नहीं, मैं ये नहीं करे माड़ी गल हुई, उन्होंने पास कराया पंजवा तखत। उनके पिछे अरदास भी चेंज लिया गई, अरदास भी तब्दीली आई, चार की थां पांच तखत गिनती आ गए। हुण असीं आखने आ सारे गुरुद्वारियां की गिनती नहीं करते, जदों अगे पुजने ना उदों सारे गुरुद्वारियां का जिक्र नहीं करते, उदों इकट्ठा कह देते कि सरबत गुरुद्वारे, पर जदों तख्तों का लफज आउंदा है उदों पांच तखत गुरुद्वारे समूच। क्यों करना पैंदा है? क्योंकि पहले चार सन, पहलियां पुरानियां अरदासां कढ़ा के देख लो उनके विच चार सन। कल भी गल की गल गुना नहीं, एक केंद्र बनाया गया सुन उस अकाल तख्त रूप सिद्धांत प्रचारण लई वक् वक् स्थान बनाने, कोई गुना नहीं, बनाने चाहिए, गलत नहीं हो रहा, बहुत ठीक। क्योंकि दूर दुराडे बैठे हुए सिख भी उस अकाल सिद्धांत नाल जुड़िया रहे, क्योंकि सिद्धांत ही अकाल है, कभी कोई इमारत अकाल नहीं हुई, अविनाशी नहीं हुई, सिद्धांत अविनाशी है, सिद्धांत अकाल है। ते अकाल पुरुष जेड़ा है, अकाल सिद्धांत रूपी तखत से सुशोभित है, वो भी एक है, पातशाह भी एक है, सिद्धांत भी एक है, वक् वक् नहीं, अज दुखांत है केवल इमारत।

पई जोत्रे भवन तन माहि समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा छत्था अथा था नहीं पावा ओ अथा इहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरखे निरख मिलावा पप्पा अपर पार नहीं पावा परम ज्योत त्यों परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूले फल होई ता फल पंख लखे जो कोई दून न परे पंख बिचारे ता फल पंख

बंधक होए बंद सुध लह। पब्बा पेद पेद मिलावा, अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर तो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए तो मन को जाने, मत

होए। मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोए। एहो मन शक्ति, एहो मन सियो, एहो मन पंच तत्व को जियो।

नाओ। रारा रस निरस कर जाने आ, होए निरस सो रस पहचाने आ। ए रस साडे ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अंत न जाए परम सच पावे। अर जो तहां प्रेम लिव लावे, तो अल्लह लह लह चरण समावे। वव्वा बार बार बिसन समार, बिसन समार ना आवे हार। बल बल जे बिसन तना जस गावे, विसन मिले सभी।

का कर सो दो, कट परचा की बात निरोधो, कट परचय जो उपजय पाओ, पूर रहा तें त्रिभुवन राव। खखा खोज परे जो कोई, जो खोजे सो बहुर न होई।

वारे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। आहा होत होए नहीं जाना जब ही होए तब है मन माना है तो सही लख है जो कोई तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग ता कारण जापे बहु सोग लक्ष्मी बरस्यो जो लियो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा किरत खपत गए केते किरत खपत

पछान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार। जाके जी जैसी बुद्ध होई।

कबीर जी की श्लोक 15 सिद्धि सात वार कह कबीर उरवार न पार साधक सिद्ध लख जो पेओ आपे करता आपे देओ सिद्धि अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम समारो जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत निज सार चरण कमल गोविंद रंग लागा संत प्रसाद पै मन निर्मल हर कीर्तन में अन दिन जागा रहाओ प्रिवा प्रीतम करो विचार कट में खेले

माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े ना कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो ना बहो।

बांध, वैसी मन सारा खो बांध, लोभ मोह सब बिसर जाहो, जुग जुग जीवो अमर फल खाहो। दसवीं दह दिस होए आनंद, छूटे परम मिले गोविंद, ज्योत स्वरूपी तत् अनूप, अमल ना मल ना छह नहीं तूप। एकादशी एक दिस तावे, तो जोनी संकट बहुर ना आवे, शीतल

पुत्र देख्या ते हूँ लोक का पियो अचरज पया जीव ते सियो तेरस तेरे अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊंच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम में बसे मुरार सत संतो का।

इस कार छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए बुधवार बुध करे परदास हृदय कमल।

तीन नदी सह त्रिपटी माहे एनस कसमल तो वह नाहे सुकृत सहारे सो ए व्रत चढ़े अंदिन आप आप क्यों लड़े।

तारियले राम कहत जन कस न करे रहाओ तारीले जन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजामल तारियले चरण बद्रिक जन तेउ मुक्त भये हों बल बल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन को राज दिए जप हीन तप हीन कुल ही।

भांति मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा मेरी हरो विपत जन करो सुभाई चरण न छाडो शरीर कल जाई कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग बिलो जन करना बिलांबा बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं से ठाओ ना तस्वीर फिराज ना माल खौफ ना खता

मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार। उरवार पार के दानिया लिख लिहो आल पताल, मोहि जम दंड न

आओ मलिन पई मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए करो कृपा परम चूकई मैं सुमत देहु समझाए जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार प्रेम पार।

कवन करम ते छूटी है जे सादे सब सिद्ध होए। करम अकर्म विचारी है संका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै कौन हिरे अभिमान। बाहर उदक पखारी है कट पीतर विविध विकार, खुद कवन पर होए वो सुच कुंच

करे। परम परस गुर पेटिए पूरब लिखत लिलाट, उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी प्रम बंधन काट विकार, सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। अनक जतन निग्रह किए तारी न टरे प्रम फास, प्रेम पद

सो दर तेरा के हा सो करके हा जित वै सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिस्यों कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जान लिख लिख तरम विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जकी सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पड़े रखी

गावन सुदनो जोध महाबल सूरा गावन सुदनो खानी चारे गावन सुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे ते सुदनो गावन जोत दुभावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते सुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई करती फिर हुक्म न करना जाए सो पात साहो साहा पत साहिब नानक रहन जाए आसा महला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म व्यंत व्यंत जी तेरे क्या गुण आत्म खाना जो सेवे तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सरान तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़े वो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आप पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवन अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुद आपे श्री सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई।

ना को होए जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम विसारे ते कम जात नानक नावे बासनात आसा मैला पहला जे दर मांगत कूक करे मैली खसम सुने पावे तीरक पावे तके एक वडाई दे जानो जोत न पूछो जाती आगे जात न हे रहाओ आप कराए आप करे आप उलामे चित तरे जातू करण हार करतार क्या मोता जी क्या संसार आप उपाय आपे दे आपे दुर्मत मने

न कोई। राजा न्याय करे हक होए, कह खुदाई ना माने कोए। मानस मूरत नानक नाम, करनी कुत्ता दर फुरमान। गुर प्रसाद जाने मेहमान, ता किस दरगे पावे मान। आसा महला पहला, जेता शब्द सुरत तुन।

इत रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवै मन चीत, बहद्या उठद्या नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, इत रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मुंड।

जी उपाय जुगत हथ कीनी काली नाथ क्या वडा भया। कि तू पुरख जोरू कौन कही है सर्व निरंतर रव रया। नाल कुटम साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वडा भया।

नानक करते का इहो तन माल, जे को बूझे इहो विचार। आसा मैला पहला कर कृपा अपने कर आया, ता मिल सखिया काज रचाया। खेल देख मन आनंद भया, सो विहण आया। गावो गावो कामणी विवेक विचार, हमरे कर आया जगजी।

नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवा तो, राजन राज सदा बिकसा तो। जिस तू राखे कृपा तार, बूढ़त पाहन तारे तार। त्रिभुवन में जोत त्रिभुवन में जानिया, उल्ट पई कर कर में आनिया। एहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिन कहला गै पाए। आसा मैला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागै तूर। लागी मैल मिटै सचनाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते प्रभ पास। रहाओ कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हौ मैं माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुरु सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुरु सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विच्चों आप गवाए। आसा महला पहला जो तिन किया सो सच किया, अमृत नाम सतगुरु दिया। हृदय नाम नाही मन पंग, अंदिन नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नौ निध पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ। ता कैसद बलिहार है जाओ, जो हर राते से जन परवान। तिन की संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी। हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे। सतगुरु सेव तत् विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ। कर्म संयम सत भाओ, नानक बसे पूछ।

इत तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ मज्जन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे तुर पागे, आसा मेला पहला, निव निव पाए लगो गुर अपने, आत्म राम निहारिया, करत विचार हृदय हर रविया, हृदय देख विचारिया, बोलो राम करे निस्तारा, गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ, रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हो मैं परम न जाई, सतगुर मिले तहो मैं टूटे, ताको लेखे पाई, हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर्धारे, भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे, मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए, नानक कृपा करे जग जीवन, सहज पाए लिवलाए, आसा मैला पहला, किसको कहे सुनावे किसको, किस समझावे समझ रहे, किसे पढ़ावे पर गुण दूजे, सतगुर शब्द संतोख रहे, ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ, अनत तरंग भगत हर रंगा, हम दिन सूचे हर गुण संगा, मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे मिरारा, सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया, आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा, कथनी कहे कहे से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है, सब जग देख्या माया छाया, नानक गुरमत नाम त्या।

तू दाता करण हार कर पार रहाओ, वाट न पाओ वींगा जाओ, दरगे बैठन ना ही खाओ, मन का अंधुला माया का बंद, कीन खराब हो वै नितकंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख है तेरे सास विरास, ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ता कह जाओ, नानक एक कह अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा सुद पावे ता दुरमत जाए, ज्ञान रतन वसे मन आए, नजर करे ता सतगुरु मिले, प्रणवत नानक पौ जल तरे, हासा मेला पहला पंच पदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी।

अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन न वाजे, चरणी चले पजूता आ गए, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए चोखी, सिंचित पाव करे।

चीने तक दगन दस द्वार, हर मुख पाठ पड़े विचार। पोजन पाओ परम पौ पागे, पहरुअरा सब चोर न लागे। तिलक लीलाट जाने प्रभ एक, बूझे ब्रह्म अंतर विवेक। आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पड़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चहु भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आसा मैला पहला, सेवक दास भगत जन सोई। ठाकुर का दास गुरुमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई। तिस बिन दूजा वरना कोई, सास नाम गुरु।

मन्ने हुकम सो प्रगट जाए, सचनी साने थाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन

उत्तर क्यों करिए बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर न कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर न कोई हरे, सर्वी रंगी रूपी तू है, किस बख्शे जिस न

हर गुरु कृपा ते नजर तरी आप विचार मार मन देखिया तुम सा मीत ना आवर कोई जो तू राखे तिन ही रहना दुख सुख देवे करे सोई आशा मनसा दो विनाशत त्रिगुण आस निराश पई तुरी अवस्था गुरुमुख पाई है संत सभा की ओट लही ज्ञान ज्ञान सगले सब जप तप जिस हर हृदय अलख वेवा नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे मोह कुटुंब मोह संकार मोह तुम तजो सगल वेकार मोह अर परम तजो तुम वीर साच नाम हृदय रवे शरीर रहाओ सच नाम जानव निध पाई रोवे पूत ना कल्पे मा

रहाओ मन मुक्ति मत पूर्व व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किस लेवो जो उपजे सो अलखा भेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई सगली सौदी।

श्रोमणी कमेटी से साडा कब्जा ना हट जाए, कब्जा पहला है सिद्धांत बाद विच है, यह साडी जिंदगी है। गल्लां मैं तुहाडे क्लास कई कई फिर कीतियां ने ताकि मैनू कोई इतराज नहीं, बेशक मैनू सांझे सामने बिठा के भी सी डी एस साहब की खतना चाहो कर सकते हो। सुभा रखा है सतगुरु की हजूरी में सच कहने लगे, संकोच नहीं कर, ऐसे ऐसे खड़े हैं जेड़े हमेशा यह सोचने बाद दूजे की नुमाइंदगी ना आए, किसी दूजे की शमूलियत ना हो, जिनी शमूलियत बढ़ेगी उन्ना साडा कब्जा कटेगा। पंजाब के हिंदुस्तान के हिस्से में रहने वाले सिखां की शमूलियत भी जेड़े नहीं चाहते राजनीतिक, वो तुहाडी शमूलियत कदों चाहणगे उत्थे, उन्होंने निगाह एक कब्जा है। तो कब्जा केवल इमारत पर हो सकता है, कब्जा केवल जथेदार पर हो सकता है, कब्जा सिद्धांत पर नहीं हो सकता। साड़ी भुले है कि असं सिद्धांत नहीं पछाणते, उन्होंने एक चांस दे रहे हैं। वो कहते हैं जिन्हू जिस इमारत से जिस व्यक्ति को यह महान समझ के बिना सिद्धांत को पछाने ये सब कुछ सौंप देंगे, असं उनके से कब्जा करिए आसान है, असं इसलिए बाहरले किसी की शमूलियत नहीं चाहते। वैसे ही बड़ा सोहना उन्होंने को जवाब है कि तुम उतों के वोटर नहीं, वोटर तो बिना उतों का कैंडीडेट कोई नहीं बन सकता, बाहरली शमूलियत उत्थे नहीं हो सकती। जिन्हें मिथे वो लोग सीटा भी उन्होंने मिलती हैं। जी गल मैं नजर आई, मैं बेनती भी की सरकार जी को भी यू आप सकार किमें करना, ये नाल सोचो साढ़े सामने मसले ने जे अज के नहीं सदियों तो चले आ रहे हैं। जिथे जिथे भी कब्जे का मसला होगा, गुरु ने बाणी में एवं नहीं आख दिता, कह लगे गावे दर्जन होत है, दावे का अर्थ की है कब्जा, दावा करना, इस चीज मेरी है। गुरु कहते जिन्नी संसार की तृष्णा की आपसी टकराव की जिन्नी अवज्ञा की जुलम की अग है, सारी दावे भी तो पैदा होंगी।

परम कार्योग गुरु की साजी नवाजी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत सारे रज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपने बहुत वड्डे भाग युगो युग अटल शब्दावतार कलयुग दे जहाज गुरता गद्दी दे मालक साहिब कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी निघी गोद विच बैठ के गुरबाणी दे कीर्तन दा आनंद माण रहे हां। सचखंड वासी धर्म ज्ञानी महान तपस्वी महान त्यागी महान पवित्र आत्मा ब्रह्म देष्टी ब्रह्म वक्ता ब्रह्म स्रोत्री धन धन जहदार संत बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज उन्हां दी पवित्र याद विच ये समागम चल रहा है। अज ये समागम का आखिरी दिन है। सारे दिनों का रिजल्ट इन्हों तात फर्ज लुबे लुबाब कहते हैं वो अज निकलना है। कृपा की वाहिगुरु ने मनुखा दे बखी नाल दी नाल गुरबाणी गुरु की कृपा हुई मनुख मात्र नूं प्रेरणा दित्ती जिस वखर तो लैण तो आया राम नाम संतन घर पाया। विचार करिए केड़ी वखर केड़ी वस्तु है जेरी संतां तो बिना होर कितों प्राप्त नहीं हुंदी वो है नाम धन। हर पूंजी संच करो हो व्यवहार इहां सुख दर गए जयकार इहां खार चलो हर लाहा आगे वसन सहेला लाभ लेहो हर हृदय आराधो छुटके आवन जानी। वो नाम धन कैसा धन है जेड़े नाम की कमाई महापुरशा ने की उन्होंने अंतरिका रूपी घर के नाम के अंबार लगे पे हैं। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नाम। जिस तरह शाहूकार के घर धन नाल माया नाल भरे होंगे ने महापुरशां अंतरिका रूपी घर नाम धन दे नाल भरिया ते जे भरिया तदे वह प्रेरणा करते ने तदे वह बार बार ये वचन करते ने जिवें कबीर साहब जी का वचन आओ पढ़ो सारे तिना हिस्सों विच बोलो पहले दास बोलेगा फिर सारे भाई तीसरे पासे सारिया बीबियां

साध संग तरह तह सागर हर हर नाम सिमर रतनागर साध संग तरह तह सागर हर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर दिया दुख रोग शोक सब विसर गुरपुरब पावक जाओ जीवन कभी हटाओ मन तन में मेरे साथ

चंद मन अंतर की उतरै चिंद, हर स्वास दे नाल सिमन कर। ए स्वास तेरा फिर बेअर्थ नहीं जावेगा। जिस तरह एक कोई ठेठ ने कोठा भरिया चलां दा, भी किते कोई ऐसी गल होगी, कोई काल कुल पै गया ते गरीबां नूं वंड देंगे, कुदरती ऐसी लेट होई।

मान कादा मान करते हैं, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, चार उनकी कब्र पे हैं और निशान कुछ भी नहीं। कोई है निशानी, किधरों आए थे किधर नू चले गए। इस तरह बहुता नाम खटन वाले, तेरा नाम निशान सब कुछ मिट जाने, आया गया मोया नाव भी मिट गया, नाव भी मर गया। आया गया मोया नाव पिछो पत्तल सद्यो काव, नानक मनमुखंद प्यार बाज गुरु डुबा संसार। सारा संसार ही डुब गया गुरु तो बिना, सारा संसार ही नरकां दे विच चलिया गया।

जिनका दयाल माधो गर्व पर हरी चरण शरण नामा बल तिहारी। एक ओंकार सतगुरु सनासी भक्त रविदास जी की। हम सब दीन दयाल ना तुम सर अब पत्यार क्या कीजिए, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए। हों बल बल जो रमैया कारने कारण कन मोल अगोल, राव बहुत जन्म बिखरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे कह रविदास आस लग जियो चेर पे उदासन देखे। चित्त सिमरन करूं नैन अवलोकनो, सारवन बाणी सजस पूर रखूं, मन सो मद कर तरु चरण हृदय तरु रसन अमृत राम नाम पाखूं। मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे, मैं तो मूल में ही ले जी सटे। राव सा संग बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बिनती हर थ्यों, पैज रखो राज राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। राव राम नाम तेरो आसरो, नाम तेरो उत्सा नाम तेरा केसरो, ले शटकारे नाम तेरा पंबला अम्बला, नाम तेरो चंदनो कास जपे, नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दिया नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल लै माहे सारे। नाम तेरे की जोत लगाई प्यो उजारे, पवन सल सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्थों, नाम तेरा तू ही चवर तुलारे। दस अठा अठ सठ चारे खाणी, ए बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। प्रार्थी वाणी पाखा की तलोचन। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुर्कृत सुकृत थारो करम जी। राव संकरा मस्तक वस्ता, सुश्री स्नान रे कुल जन मदे मिलो, थारग पान रे कर्म कर कुलांक मस्तीटस री। विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंथी राय अगर ताचे बदला। कर्म कर आरण पिंगलारी, अनेक पातक हरता प्रपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ परमता लह ना पारी, कर्म कर कपाल मफीटसरी। अमृत सखी तेन लक्ष्मी, कलपतर शिखर सुनागर नदी दे नाथन। कर्म कर खार मफीटसरी, दागले दादीले लंका गढ़ ओपारी ले। रावण बाण सब विसल आन तुखले, हरी कर्म कर कस तू उटी तुफीट सरी। पूर्व लोक कृत कर्म ना मिटे, री कर गेहन ता चे मोय जपियले। राम चे नामे पतलोचन राम जी, श्री सैन धूप दीप कृत साध आरती। वारने जाऊं कमलापति, मंगला हर मंगला नित्य मंगल। राम राम राजा राम राय को, राव उत्तम दीरा निर्मलपाती, तू ही निरंजन कमलापाती। रामा भक्त राम नंद जाने, पूर्ण परमानंद बखाने। मदन मूर्ख भै तार गोविंदे, सैन भणे भज परमानंदे। कृपा कायो देवा कायो, बिरवल कायो जंगम जाति। कायो धूप दीप नहीं बदा, कायो पूजो पाती। आया वो खंड खोजते नाव निध पाई, ना किश आए वो ना किसी जाए वो। राम की लहाई आओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खुद जैसो पावे। पीपा प्राण वे परम तत् है, सतुर होए लिखावे। तन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भक्त करते तिनके का सवाता। राहो दाल सीधा मांगू पियो, हम हमरा खुशी करे चित जियो। पनिया छादर मंगी का, अनाज मंगू सत सीका। गौल पैसा मंगू लवेरी, एक ताजम तुरी चुकेरी। करती गहन चंगी क्या तन्ना ले।
जय श्री मतलब चौथा कार पहला चौक दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मेरे हीरे विच नाम हर वसया गुरु हाथ रहो मेरे माथा जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुरु नाम लिबिए गुण रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब जस अर्था गुरु बुरे हर नाम दढ़ाया बिन नावे जी मृत्या रहाओ बिन गुर मूर पै है मनमुख ते मोह माया नित पाता तिन साधु चरण सेवे तुम तुम तो सब जन्म साथा जिन साधु चरण साल पग सेवे तिन सब जो जन्म सुनाथा जमो को बीज दास दास दासन को हर दया तार जन नथा हर अंग हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चला मार्ग पंथा हम अंधले को गुरान चलीजे जन नान चला मंथा जय श्री वाला चौथा हीरा लाला मूलक है भारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखो तब रतन विकानो लाखा मेरे मन को तहर हीर हार रखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिलिए हीर रखा राव मन मुख कोठी अगन अंधेरा तिन कार रतन लाखा ते उजड़ भरवारी माया भंग बिखर चाखा हर हर साधु मिलो जन नीचे हर साधु सन राम रखा हर अहंगीकार की उपरा स्वामी हम परे भाग तुम पखा देवा क्या गुण आख बखाया तुम बड अगम बड पुरखा जन नानक हर कृपा धारी पखान डूबत हर रखा जैसे मतलब चौथा हम बार कछु ना जाने गातमिक मेरे मूर्ख मुग्ध ऐना तेरे मूर्ख मुग्ध ऐना हर कृपा धार लीजिए मत उत्तम कर लीजिए मुग्ध सुगैसैना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर नाम आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहो गुर खिन खिन प्रीत लगाओ मेरे हीरे मेरे प्रीतम ना पराना मेरे नामे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल फलवाना जिन मन प्रीत लगी हर की तेरी तिन तूर भाग पराना तिन हम चरण सुरेवा खिन खिन जिन हार मिठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन विसरिया तेरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दराया जन नानक करवाना ऐसी मिला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रस रस फल लागवा माया भंग ग्रस्यो है प्राणी गुर बचनी विस हर काटवा मेरा मन राम नाम रस लागवा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर रस चाखवा राव तन धन बड़भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लागवा कृष्णा गुण बुद्धि सांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायवा इनके पाग जीन तुर पाए जिन सतु रस ना पाएगा ते दूजे पाए पवे ग्रव जूनी सब मिठा जन्म तिन जाएगा हर दे बिमल मत गुरसाग पग सेवा हम हार मीठ लगाएगा जन नानक रेन साग पग मांगे हर होए दयाल दयावगा दयाए दवाए जैसी मल चौथा जिन हर हृदय नाम बसो तिन माती जे हर मन बन जा तिन सुनजी देव फिरे बिन नामे ओए खप खप मुए करांजा मेरे मन रप जप राम नाम हर मन जा हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहो हर कीर्त कलयुग पद उत्तम हर पाइये सतुर मन मन जा हाओ बलिहारी सतुर अपने जिन कुप्त नाम परगांजा दर्शन साध मिलोट भागी सब के लोक गाय गौंजा सतुर सा पाया वरदाना हर किए बह गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर धार्यो मन

शरीर लगाया, वो साधु बहुत सरदा लाए मुख तुरा, मुख तुरा हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन बुरा, हर हर मेल मेल जन साधु हम साधना का किया, जन नानक दीप लगी पग साध गुर मिल साधु पखान हर मन गुरा बुरा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय श्री मल्ला चौथा का दूजा, हर हर सिमरो अगम अपारा जिस मृत दुख मिटे हमारा, हर हर सतगुर पुरख लवाओ मिलावो गुर मिलिया सुख होई राम, हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उरकारे, हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिया प्रगट होई राम, माधुसूदन हर माधु प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम सदा सुखदाता हर कै रंग मेरा मन रखता, हर हर महापुरख गुर मिलो गुरु नानक नाम सुख होई राम। जैस मेरे चाचा हर हर हर हर नाम जपहा गुरमुख नाम सदा लै लहा, हर हर हर हर भगत नाम हर हर नाम महाराम, हर हर नाम दयाल दयावा हर के रंग सदा गुण गावा, हर हर हर जस घूमर पाऊ मिल सत संग तो महाराम, आओ सखी हर मेल मलाहा सुन हर कथा नाम लै लहा, हर हर कृपा कथार गुण मिलो गुरु मिलिए हर महाराम, कार पीत सस अगम अथाहा खेन खेन राम नाम गवाहा, मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते हर नानक भक्त महा राम। जैसी मेरा चौथा हर रास रास राम रसाल रसलाहा मन राम नाम भीना लै लहा, खिन खिन भक्त करा दिन राती गुर मत भक्त महाराम, हर हर गुण गोविंद जपहा मन तन जी सब शब्द लै लहा, गुरमत पंच दूत बस आवे मन तन हर महाराम, नाम रतन हर नाम जपहा हर गुण गाय सदा लै लहा, दीन दयाल कृपा कर माधो हर हर नाम महाराम, जप दुदी जपो मन मुख महा हर हर जगन्नाथ जगलहा, तन तन बड़े ठाकुर प्रभु मेरे जप नानक भगत महाराम। जैसी मिला चौथा आपे जोगी जुगत जुगाहा आपे पर पौधा जुगाहा, आपे ही आप वर्ते आपे नाम महाराम, आपे दीप लोद पाहा आपे सतु समुद्र समुद्रता, आपे माथ माथ तत् कढ़ाए जप नाम रगन महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावा गवावा गुरु नाम जपो हर लाहा, हर हर पगड़ी मन पाई हर हर नाम महाराम, आपे बड़ लाना बड़ साहा गुरमुख पूजी नाम वसाहा, हर हर दात करूं प्रभावे गुरु नानक नाम महाराम। जैसी मिला चौथा मिलता संगत संग गुराहा पूजी नाम गुरु कविहा, हर हर कृपा तार मद सूदन मिलता संग ओ महाराम, हर गुण वाणी सरवण सुनाहा कर कृपा साहब तुगर मलहा, गुण गावा गुण बोला बाणी हर गुण जप महाराम, सब तीर्थ वत जग पुन तलाह हर हर नाम ना पूजे पजा, हर हर अतुल तोल अत पारी गुरु जप महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपहा किलुक मैल पाप सुहावा, दीन दयाल हो जन ऊपर बे नानक नाम महाराम। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जैसी वाला पंजवा का तीजा, कोई जाने कवन गया जग मीत जिस होए करवाल सोई बिन दूजे, ताकि निर्मित रहो मात पिता बनता सत बंधा हो इसमें कर पाई, प्रभु जानू के मिले संजोगी अंत को न सहाई, मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया, हाँ हाँ कत हानि अगे ता मैं संतोख न पाया, हस्त रथ अश्व भवन तेज तनी धूमन चितरंगा, संग ना चालियो इनमें कछुए उसदायो नंगा, हर के संत प्रय प्रीतम प्रभ के ता कह हर हर गइये, नानक हिया सुख आगे मुख उज्जल संग संत कह पाइये। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जैसी मिला पंजवा घर तीजा द्रोपदे, देज संतरो कहियो प्रय कहियो विश्व कही मैं बहु विद सुनते कहो सुहागन सही।

0: विगमन भी जैतानी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरे हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग आवरणी। जैसी मिला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को आपदा निकट ना आवै पूर्ण दास के काम रहो कोट बिगन बिगन सह हर सेवा निश्चल गुण निधान पावो अंत भगत को पहो किस नाही आदर देव जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई मिल सतो खाम चरण कमल हृदय गुण नानक कहो नानक सुख समूह विश्राम एक ओंकार सतगुरु साहिब जय श्री मलानवा। भूलियो मन माया और जायो जुर करो कियो लाल कित लग तै तै आप बंधायो राहो समझ ना परी विखे रस चख्यो जस हर को विसरायो संग तो अमित सो जान्यो नाहिन बन खोजन कोतायो रतन राम कट ते पितर ता को ज्ञान ना पायो जाना नु भगवंत भजन बिन दिता जन उड़ायो। जैस मेरा नवा हर जू राख ले पत मेरी जम को त्रास प्योर ठा अंतर सरण गही कृपा चंद तेरी राहो महापतत मुग्ध लोभी गुण कत पाप अब हरा पै मरव को विश्व नाहन ते चिंता जन तन धरा क्यों पाव मुक्त के कारण दया दस को उठताया कठी भीतर वसनंजन ता को मर ना पाया नाहन गुण नाहन कुछ जाप तप कौन कर्म अब पीजे नान खार प्रयोग सर नागक अब दान प्रव दीजे नासी मलनवा मन वे साचा कहो बेचारा राम नाम बिन मिथ्या मनो सगरो एस अनुसारा राहो जहाँ को जोगी खोजत हारे पयो पायो ए नाह तय पारा सो स्वामी तुम निकट पछान निकट पछाने निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत है मैं हर को पवना नाह संवारा नानुसार न पर्यो जग बंधन रखो विद्या तुम्हारा एक ओंकार सतगुरु का जैसी मतलब शांत कार पहला श्लोक दर्शन प्यासी जनसरात चतुरीता खोल कपट गुर मेलिया नानक हर प्रसंग नीता शांत सुन जात सज्जन हमारे सज्जन सुन जार हमारे सज्जन करूँ बिनंतियाँ तिस मोहन लाल प्यारे हो रुक जंतियाँ तिस दास प्यारे सिर तरी उतारे एक पोहरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रै रंग रंगारे एक तिल पी ना त्रीजे प्राव स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चातुर जीवें तसंतियाँ जन नानक पूरा पाया सगली तिखा बजंतियाँ जार वे प्रै हबे सखियाँ मुँह कही न जहियाँ यार वे एक दो एक चाड़े हों किस चेहियाँ एक दो एक चाड़ अनेक प्यारे नित का दे भगदासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुंतासा जिनी मैंडा लाल रजाया हों तिसे अगे मन दिलियाँ नानक है सुनो सुन बनो सुहागण मुँह दस देखा फिर कहियाँ यार वे फिर आवन अपन पाच किस निश्चि चंदा जार वे तै रागया लालन मुँह दस दसंदा लालन तय पाया अप गुआया जय तन पाग मथाने मां पकड़ गुरु ठाकुर हो गिद्धि गुण अवगुणा पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिसब कस सहंदा जनन धन सुहागन साई जिस संग पातार सबसंदा ग्यारहवें सुख सुखेंदी सा मैं पाई बालड़िंदा आया वजी बधाई महामंगल रह सतिया तद्याल सत नवरंगिया बड पाग पाया गुर मिलाया साध कह सतिया आसा मनसा सगल गुरी प्रै अंक अंक मलाई दिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई एक ओंकार सतगुरु साहिब जैसी महला पंजना कर दूजा शांत। श्लोक उच्चा आगम अपार प्रव कथन जाए अकथ नानक प्रव सुना थे अखण को सम्राथ शांत ज्यों जानू त्यों राख भर प्रव तेरिया खेते गुणु असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत खद भूलिए मोह मगन विकराल माया तौ प्रसादी भूलिए जो कत बकार विखरे प्राव नेरो हिते नेरिया हनुमंत नानक दया धारो काढ़ पाप जल फेरिया। श्लोक नित ना पावे असंख गुण ऊंचा प्रभु का नाओ नानकी बेनतियाँ मिले निशान थाओ शांत दूसर नाही थाओ का पै जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ चाहिए चाहे सो प्रभ सदा अपना मने चंदिया पाइए चज मान मोह विकार दूजा एक क्यों लिवलाइए अपर अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक धार कृपा सतनाम समाइए। श्लोक रे मन ता को ध्याइए सब बिद जाके हाथ राम नाम तन संचिए नानक निवेश साथ संत साथी रा प्रभ एक दूसर नाहे कोय संत नर आप जल थल पूर सोए जल थल मिजल पूर रहा सर्वदाता प्रभ संतुनी गोपाल गुणंद अंत नाही ब्यंत गुण ता के क्या गुणी क्या गनी पज थुरन सारण स्वामी सुखागामी तिसुना मैं अन नाहे कोय गुणवंत नानक दया धारो तिस प्राप्त नाम होए। श्लोक चित जे चितया सो में पाया नानक नाम त्याए सुख सवाया शांत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लिया ज्योति ज्योतर रे हर नाम सिमरत मिटे तिलक बुद्धि तपत अगान्या जय पूजा कीने दया कीने अपने कर मान्या अलह अंक लाए फिर हर में लाए जन मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेरे लीने एक पले। जय श्री संत महला पंजवा मल पा धानु संसार गर्भ अत्या करते आप अनेक माया रंग रखिया जो मैं अवमान बुढ़े मन चीत न आवे पुत्रक मित्र व्यवहार बनता ए करत विहावे पूज दिवस आवे लिखे माए दुख तारू तुहा दिठ्या किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम धन नहीं कटिया उदों करे करा अनेक हर नाम ना गावी भरम में जून असंख मर जन्मे आवे पशु पंखी सैल सरवर गणत कशन कशु ना आवे बीज बोस भोग भोगे आप की अपना पावे रतन जन्म हरंत जुए प्रभु आप ना पावी बिनवंत नानक भरम परम आए हिन एक टिकन ना पावी जोवन गया तीत जारम मिल बैठिया कार कंपे सिर डोल नैन ना डिठिया नह नैन दिसे बिन भजन दी इसे छोड़ माया चलिया कहा ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग रा पार पूरन नह निख मन में बूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिनस वार न झूठिया चरथ कर कमल सरनाय नानक आया दुत्र है तै संसार प्राव आप तराया मिलसा संगे पद श्री चर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लीने नाम दीवे और कछना विचारिया गुण गाना पार कर ठाकुर मन लड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया एक ओंकार सतगुरु जय श्री मल्ला पंजवा रास लोकां नाल लोग आद पूर्ण माध पूर्ण अंत पूर्ण प्रवित्रा सिमरत संत सगत रमन नानक अगनस्थन जगदीशरा एखन सुन सुनावनो मन में गड़िए साच पूर्ण देहो सरत में नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक नंजन गाइये सब अंतर धोई कर्ण कर्ण सम्राथ प्रभ जो करे सो होई खिन में थाप थाप ला किस दिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पताल दीप रव्या सब लोई जिस आप जाए शुभ जिसी निर्मल जन सोई श्लोक चांत जी रचना मात गर्भ आस्थान पनम सा सा सिमरंत नानक महा अगन ना विनाशन मुख तले पैर प्रसंदो को थड़े थाए नान सो तनी क्यों बिसारिये उभरे जिस दय नाए पौड़ी रक्त बिंद कर नया अगन उदर मजार उर्दमुख कुचूल विकल नरक पूर्व द्वार हर सिमरत तू नाथ गलै मन तन उतार दिखम थानो दिन रखिया तिस चलना बसार प्रभ बिसरत सुख दिना है जस सुजन हार श्लोक मन इच्छा दान करण सुरत अता पूर्णा खंडन काल कलेश उपलेषा प्रभ सिमर नानक नै दुरना हब रंग माने जिस संग तै स्यो लाइए लाइए ने सो साबिंद ना बिसरो नानक जिन सुंदर किया देर पौड़ी जियो प्राण तन धन दिया जिन्हें रस भोग गह मंदिर रथ आस दिए रच भले संजोग सुनबंता साजन सेवक दिए प्राव देवन जोग हर सिमर तन मन हरिया हरिया हरिया लह जाहे बजोग साध संग हर गुण रमो दिन से सब पुरोग श्लोक कुटुंब जतन करन मैया अनेक उद्यमा हर भगत भावहीन नानक प्रभ दिसत ते प्रेतता तुतस टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बिनवंत स्यो नान सची रीत साई स्थिति दत्या पौड़ी जिस विसत भान तन भस्म होए कहते सब प्रेत खिन ग्रह में बसन न देवी जिन स्यों सोई हेत कार अनाथा दर्व संचया सो कर केत जैसा बीजे सोलने कर्म ए खेत एकत करा हर विसरिया जोनी परमेत श्लोक कोट दान स्नान अनेक सोदन पवित्रा उचरत नानक हर हर रसना सब पाप बमुचते इंदन की तोम कणा पूरी बिचूम पाए मन बसंदरो सच सा नानक हबे दुखड़े औलाहे पौड़ी कोट अगा सब नाश होए सिमरत हर नाओ मन चुंदे फल पाइए हर के गुण गाओ जन्म मरण तय कटिए निश्चल सत उठाओ गुरु होए लिखिया हर चन्न समाओ कर कृपा प्रभ राख ले नानक बल जाओ श्लोक ग्रह रचना अपारंग मन बिलास स्वादन रसा चनाच नै सम्रत नानक से जंत जिसका कम कमा मुच अडंबर हब
1: हब के हो मन जो मोहब्बत में है सो साई जय विसरै नानक सो तन खे पौड़ी सुंदर तेज अनेक सुख रस पोगण पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख माणदा किछ नाही विसुरे सो प्रभ चित न आवई निचाके कीरे बिन हर नाम न सांत होए चित विद मन तीरे श्लोक चरण कमल बिरहंग खोजंत बैरागी दह विषय त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग में मन साई मुख उचरा वता हब बेलो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुमपड़ी चीर सब छिन्ना जात न पतन आदरो उद्यान प्रमन्ना मित्र न इठ तन रूपहीन किछ साक न तन्ना राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरै प्रभ होय सुप्रसन्ना श्लोक अनक लीला राज रस रूपम छत्र चमर तख्त आसनं रचंत मूढ़ अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हब रंग माणया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने सेती चित मूरख लाया दूसरे राज रस भोग जागत बखलाया आर जा गई विहाय चंदै ताया पूरन पे नकाम मोहया माया क्या विचारा जंत जा आप पुलाया सलोक पसंत स्वरग लोके जितते पृथ्वी नव खंडने विसरंत हर गोपाले नानक ते प्राणी उद्यान परमणे कौतक कोड तमासया चितन आवसनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई ठाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानया झूठ समग्री पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार सिरे देवानिया सिर लगा जम डंडता पछतानिया बिन पूरे गुरुदेव फिर ऐसे तानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भते संचित बिखिया छलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चालते पिखंदड़ो की पुल तुमा दिसम सोहणा अड न लहंदड़ो मुल नानक ਸਮਰਪ ਸਾਥ ਨਾ ਜਿਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਪੌੜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਟੋਕਿਓ ਸੰਜੀਏ ਤਿਸੇ ਤਿਸਕਾ ਕਹੋ ਕਿਆ ਜਤਨ ਤਿਸਤੇ ਵੰਜੀਏ ਹਰ ਬਿਸਰੀਏ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਨਾਮਨ ਰੰਜੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਡ ਅਨ ਲਾਗੇ ਨਰਕ ਸਮੰਜੀਏ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਪਵਨ ਜੀਏ ਸਲੋਕ ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਿਸਟੰਗ ਨਚ ਭੋਗ ਰਸ ਮਿਸਟੰਗ ਨਚ ਮਿਸਟੰਗ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਮਿਸਟੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਿਸਟੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨੰਗ ਲਗੜਾ ਸੋ ਨਿਹੋ ਮਨ ਮੁਜਾਹੂ ਰਤਿਆ ਵਿਜੜੋ ਸਚ ਛੋਕ ਨਾਨਕ ਮਿਠੜਾ ਸੋਤਣੀ ਪੌੜੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਛੂ ਨ ਲਾ ਗਈ ਭਗਤਨ ਕੋ ਮੀਠਾ ਆਨ ਸੁਆਦ ਸਭ ਫੀਕਿਆ ਕਰ ਅਨਪੋ ਡਿਠਾ ਅਗਿਆਨ ਪਰਮ ਦੁਖ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਪਏ ਵਸੀਠਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਜਿਉ ਰੰਗ ਮਜੀਠਾ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਝੂਠਾ ਸਲੋਕ ਤਿਅਕਤ ਜਲੰਗ ਨਹਿ ਜੀਵ ਮੀਨੰਗ ਨਹਿ ਤਿਆਗ ਚਾਤਰਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲੇ ਬਾਣ ਬਿਰਤੰਚ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੰਗ ਅਲਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਵਾਸਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਚਤ ਸੰਤਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ ਰੁਚਦੇ ਮੁਖ ਦਿਖਾਊ ਪਲਕ ਛੱਡ ਆਨ ਡੇ ਉਚਿਤ ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ ਤਿਸ ਤਣੀ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾ ਮਿਤ ਪੌੜੀ ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਨਾਦ ਕੁਰੰਗ ਕੇ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਤਾ ਵੈ ਪਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾਮਿਲ ਆਪ ਬੰਦਾ ਵੈ ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੇ ਸਲੋਕ ਚਿਤਵੰਤ ਚਰਨ ਕਮਲੰਗ ਸਾਸ ਸਾਸ ਅਰਾਧਨੇ ਨਹਿ ਬਿਸਰੰਤ ਨਾਮ ਅਚੁਤ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੇ ਸੀਤੜਾ ਮਨ ਮੰਜਾਏ ਪਲਕ ਨਾ ਥੀ ਵੈ ਬਾਹਰਾ ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਭਾਏ ਸਦਾ ਪਿਖੰਦੋ ਸਚ ਤਣੀ ਪੌੜੀ ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਕਭੂ ਚੂਰੀਐ ਦੇਹ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ ਲੇਹ ਜਾਹੇ ਵਿਸੂਰੀਐ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਰਨਾ ਤੂਰੀਐ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਦੇਵ ਸਦਾ ਹਜੂਰੀਐ ਸਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਤ ਨਾਮੰਗ ਸ੍ਰਵਣੰਗ ਸੁਨਤ ਸਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੰਗ ਜਿਨਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਹਬ ਕੁੜਾਵੇ ਕਮ ਇਕਸ ਸਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾਨਕ ਸੇਹੀ ਤਨ ਜਿਨਾ ਪਿਰ ਹੜੀ ਸਚ ਸਿਉ ਪਿਪੌੜੀ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਜੇ ਸੁਨਤੇ ਹਰ ਕਥਾ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿਤਵੈ ਚਿਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਵਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਮਥਾ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਸੋਹੇ ਤੇ ਹਥਾ ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲੈ ਪ੍ਰਭ ਪਖਾ ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲਥਾ ਸਲੋਕ ਪਾਵੀ ਉਦੋਤ ਕਰਨੰਗ ਹਰ ਰਮਣੰਗ ਸੰਜੋਗ ਪੂਰਨੇ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ ਪੇ ਟੰਗ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮਹੂਰ ਤੇ ਕੀਮ ਨ ਸਕਾ ਪਾਏ ਸੁਖ ਮਿੱਤੀ ਹੂ ਬਾਹਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾ ਵੇਲੜੀ ਪਰਵਾਣ ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਸਾ ਵੇਲਣੀ ਪਰਵਾਣ ਜਿਤ ਮਿਲੰਦਣੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ ਸਾ ਵੇਲਾ ਕਹੁ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪਾਈ ਸੋ ਮੂਰਤ ਕਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਗੋਸਾਈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਇ ਕੈ ਮਨ ਪੁਜਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਵਲਾਗਾ ਪਾਈ ਮਨ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਲਜਾਈ ਸਲੋਕ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸਰਬ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣੇ ਸਰਣ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨੇ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਛੱਡਿਓ ਹਬ ਆਪ ਲਗੜੋ ਚਰਣਾ ਪਾਸ ਨੱਠੜੋ ਦੁਖ ਤਾਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੰਦਿਆ ਪੌੜੀ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਦਿਆਲ ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹਰ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ ਤੁਜਵਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨੋ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ ਕਰ ਜਹਿ ਲੇਹੋ ਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਿਆਲੰਗ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੇ ਨਿਰਮਲੰਗ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੂਤ ਮੂਲ ਮਿਟਈ ਕਾਮ ਸੀਤਲ ਥੀ ਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਪੌੜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਦਰੇ ਸਗਲ ਜਨ ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰਪੋ ਪਏ ਮਨ ਟੋਟਨ ਆਵੈ ਮੂਲ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਇ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਨ ਸਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਣੰਗ ਦੁਖ ਹਰਣੰਗ ਉਚਰਣੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੈ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹੇ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਨੇ ਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਪੌੜੀ जा प्रभ पए दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नाथ हर इक त्याया निर्मल पए शरीर जन तूरी नाया मंतन पए संतोख पूरन प्रभ पाया करे कुटुंब संग लोग कुल सबाया सलोक गुरु गोविंद गोपाल गुरु गुरु पूर्णे नारायणे गुरु दयाल समरथ गुरु गुरु नानक पतित उदारणे पौजल बिखम असगाह गुर बहुते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगे आ पौड़ी तन तन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जब पए ता अवगण सब थपे पार ब्रह्म गुरुदेव नीचो उच थपे काट सलक दुख माया कर लीने आप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जपे सलोक त्रिष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नर हरे नाम दान जाचंत नानक दयाल पुरख कृपा करे हिक सेवी हिक समला हर इक पह अरदास नाम वखर तन संचया नानक सची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूरन इक एहो सब किछ आपे आप दूजा कहा के हो आप करो प्रभ दान आपे आप ले हो आवन जाना हुकम सब नह चल तुद थेओ नानक मंगे दान कर कृपा नाम देहो जैतनी बाणी पगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नात कछु न जानेओ मन माया के हाथ बिकानो रहाओ तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल जुग के कामी इन पंचन मेरो मन जो बिगारेओ पल पल हर जीते अंतर पारेओ जत देखो तत दुख की राशी अजो न पढ़ाए निगम पर साकी गौतम नार उमापत स्वामी सीत तरन सहज पगगामी इन दूतन खल बद कर मार्यो बड़ो निलाज अज हूँ न हार्यो कही कह रविदास कहा कैसे की जय बिन रघुनाथ शरण का की ली जय एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग टोडी मल्ला चौथा कर पहला हर बिन रह ना सके मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहर न पव जल फेरा रहाओ मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैनो हर प्रभ हेरा सतगुरु दयाल हर नाम दृढ़ाया हर पादर हर प्रभ केरा हर रंगी हर नाम प्रभ पाया हर गोविंद हर प्रभ केरा हर हृदय मन तन मीठा लागा मुख मस्तक पाग चंगेरा लोभ विकार जिना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा ओए मन मुख मूड अज्ञानी कहिए तिन मस्तक पाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुरु ते पाई गुरु ज्ञान गुरु प्रभ के राजन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्तक पाग लखेरा टोडी महला पंजवा कर पहला दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद संतर अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाख स्वामी रहाओ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो पगतन को राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी निरपो होए रहे लिव एक नानक मन मानी टोडी महला पंजवा हर विकृत सदा खुआरी ताको तोखा कहा व्यापै जाको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर्जारी नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी तो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो तिन प्रभ आप बुलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत सो इक मोहत न एह मन लायो बिक्यो पेक रंग कसंभ को पर गह जो हन जायो चरण कमल सो पाओ न कीनो नह सतपुरख मनायो तावत को ताव भो पाती जो तेली बलद प्रमायो नाम दान स्नान न कियो इक निमख न कीरत गायो नाना चूट लाए मन तेख्यो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कभू किए नहीं सतगुरु सेवते आयो पंच दूत रच संगत गोत मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वछल सुन आयो नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मानुख बिन भूजे बिरथा आया अनिक साज सिगार भव करता ज्यो मृतक उड़ाया रहाओ ताए ताए कृपन श्रमकीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा किसी ही काज न आया। कर आपरण सवारी से जा काम न थाट बनाया। संग न पायो अपने पड़ते पेख पेख दुख पाया। सारो दिनस मजूरी करता तो हम मूसले छराया। खेद पयो बेगारी न्याय करके काम न आया। पयो अनुग्रह जाको प्रभ को तिग हृदय नाम वसाया। साध संगत के पाछे पर्यो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत। तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ। दास तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो। महापतित के होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो क्यों तुहारो पावो। जो तू देह तही ए तृप्त आनकत हूतावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल ऋण होय रही है। साधु संगत होय परापत ता प्रभ अपना लही है। सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा कर दूजा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मागो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चाले। मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम। ताए ताए बहु बिज को तावे सगल निरारथ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो जिसे सगल बात है खाम। कहो नानक संत रेन मागो मेरो मन पावे बिसराम। टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे। जी प्राण सुख इस मन को बर्तन एह हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरे परवार है। नाम सखाई सदा मेरे संग हर नामो को निस्तार है। दिखे बिलास कहियत बहुत तेरे चलत न कछु संगार है। इस मीत नाम नानक को हर नाम मेरे भंडार है। टोडी महला पंजवा नीके गुण गाओ मिठी सेवा मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अहंकारा मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा अवर न करने जोग। टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी। मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाए हमारी रहाओ। अवर न सूजे दूजी ठाहर हार पर्यो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेख है छूटे हम निर्गुण ले उबारी। सद बक्संद सदा मेहरवाना सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे पर्यो राख ले हो एह बारी। टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायन। सात सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन रहाओ। जो मागे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दुहु ते छूटे पग जल जगत तरायन। खोजत तत् बिचार्यो दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा निंदक गुर कृपा ते हाटे पार ब्रह्म प्रपय दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो रहो काल जाल जम जो न साके। सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किच निखटत नाही। राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना क्या पाया। आगम निगम कहे जन नानक सब देखे लोक सबाया। टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख परे। साध संग भजन कर स्वामी टाकन को इक हरे रहाओ। अनिक छिद्र बहुत के छुटकत थाम न जाही करे। जिसका बहुत तिस आराधे खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहे ओए उहा ही है तरे। जोर सकत नानक किछ नाहे प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन के आओ। काड कुठार पित वात हंता औखद हर को ना हो रहाओ। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास। ताको बिगन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद्य नारायण करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप। तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वस्ती की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से सोग संताप। हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ। नानक करण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अरत बिचारे साध संग परम गत पाइये माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सोजन मिले प्यारे नानक अनत करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा करती जत चोप दे एक ओंकार।

नाम संगी सो मन ना बिसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संचो जित भूख चितायो अमृत नाम तो सा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परिया गुर प्रसाद नानक को तरिया टोली मैं ला पंजवान हमारे एक हरि हरि आन अवर स्याण न करी रहाओ वडे पाग गुर अपना पायो गुरमुख को हर नाम दृढ़ायो हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब किछु तिसके गृह में आया टोली मल्ला पंजवा कर चौथा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद रूड़ो मन हर रंगो लोड़े गाली हर निहो नक होए रहाओ हाँ डुडे दी दर्शन कारण बीथी बीथी देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन हो लेखा लिखियो तुर माथ है ए विद नानक हर नैन अलोय ठोटी महला पंजवा गर्भ गह लड़ो मूड़ो हियो रे मियो यो महाराज री मायो डी हर न्याय मोहे फाक्यो रे रहाओ कणो कणो कणो सद लोड़े बिन लहणे कैठ पायो रे महाराज रो गाथ वाहू सो लुबड़ो नह पागड़ो भाई संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राचित मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास न पोड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपते एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख अर अहंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिख्या ते गुर को शब्द मेरा हियर दीन रूप अनुरूप मोरो कछ न विचार्यो प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन पेख्यो लालन पाट बीच खोए अनद चिता हर खे पतीन तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन टोली मल्ला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही करम तरम जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोर है देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट काट तो सा संग मोर है मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी मला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमक हियरे ते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामे सुगढ़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत दृष्ट तारो प्रभमान आठ पहर रत्ना गुन गावे जस पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान टोडी मल्ला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ जह दिस रव रहे आज जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कब न मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे विसूर सुख संपत पोग इस जी के बिन हर नानक जाने पूर टोली मला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बन बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आस रहा सिमरो नाम निरंजन करते मन संते सब के विखनाथ पूरन पाए ब्रह्म सुख दाते अबनासी विमल जाको जात संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुणतात सात सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक पर गास टोली मल्ला पंजवा हर हर पतित पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामे मन को पावन रहाओ सुंदर सुगढ़ चतुर सब वेता रिद्ध दास निवास पगतन गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म कुम बीजन सुखावन बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा आन्ना बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक सास सदा बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिनकी अगन मेघ की छाया गोविंद पजन बिन हड़ का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दो कर जोड़ साद मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुक देके ऐप उत्तम फल वेद दयाल करत साधु जन

भाव देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु दीठे रहा गुण गावत अचित अविनाशी काम क्रोध बिनसे सद दीठे अक्षर पहे साच रंग राते जन्म मरण बाहर नहीं पीठे बिन हर पजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे राम नाम रतन पायो जन नानक नाम भी होन चले सब मूठे तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हो वह दिन राति अंतर पलो हमारा रहा गुरपुरा पेटियो वड़ पागी जाको अंत न पारा वार कर गह काड लियो जन अपना बिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुरु वचनी बहुड़ न संकट द्वारा नानक करण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट अनंद राज सुख पुगवे हर सिमरत बिनसे सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल विखना से सिमरत पावन तन मन सुख देख करूप पूरन पैया सा दर्शन पेटत उतरी पुख चार पदारत अस महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक करण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गरम न तुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उड़तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहा पुण दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहर कछु ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा नान हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नोवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहा अपनी अदमाई उद्यो कनक कामनी के रस नहीं की रत प्रभु गाई रहाओ जग झूठे को साच जान के ताचोर उपजाई दीन बंद सिमर्यो नहीं कब हो होत जो संग सहाय मगन रहो माया में निस दिन छूटी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाय टोली माणी भगता की इक्यू खा सतगुर प्रसाद कोई बोले नीरवा कोई बोले दूर जमकी माछड़ी चरे खजूर काय रेवक बाद लायो जिन हर पायो तिन्हें छुपायो रहाओ पंडित होय के वेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने कौन को कलंक रहो नाम राम नाम ले

तेल आचे जंगल मते बोल बेल गो माली के घर केल आचे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद आचे गोकल मदे श्याम गो नामे मदे राम आचे राम श्याम गोविंद गो राग बिराड़ी महला चौथा कर पहला दुपते एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकत कथा हर नाम विद बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर क्रोड़ ते तिस ते आयो नहीं जानियो हर मर माम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपा नानक कृपा करी हर जिन को ते संत पले हर राम बिराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुरु सतगुरु दान दिवायो रहाओ तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस के आयो जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख हो मैं रोग गवायो बिराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत्व विस्तारा विच तातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे जगर चुकावे बिराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कटंतर के पाप सब खोवे हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बसत हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकार हर निकट बसत कछ नदर न आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहो सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जित कृपा करे सो हर नाम विहाजे ते सो साहो सचा वणजारा बिराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याये सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाओ अगन कुंट में उरद लिव लागा हर राखे उदर मंझारा सो ऐसा हर ते वो मेरे मन हर अंत छड़ा वणहारा जाके हृदय बतिया मेरा हर हर कृष्ण को करो नमस्कारा करे हर कृपा ते पाई है हर जप नानक नाम अधारा बिराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याय जो इच्छा तो ही फल पावे फिर दुख न लागे आए रहाओ सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठे एक छिन में बिसर सब जाए तू बेअंत सर्व कला पूरा किछ कीमत कहीं न जाए नानक शरण तुम्हारी हर ज्यो पावे तिरे छड़ाए राग बिराड़ी महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सो ही मन पायो हर कृपा कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग तिलंक महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैप अंकुर प्रसाद अक अरज गुप्तम पेश तो दरगोस कुन करता हका कबीर करीम तू बियाब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम करमो अजराइल गिरफते दिल हेच ना दानी रहाओ जन पितर पदर विरदरा कस नेस दस्तंगीर आखिर व्यक्तम कस नादारत चूसे वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहिना ने की कार करदम ममई चिन्नी अहवाल अहवाल बद बखत हम चो बखील गाफल बेनजर बेबाक नानक बर गोद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पौ तेरा पांग खलड़ी मेरा चीत मैं देवाना पया अतीत कर पाता दर्शन की फूक मैं दर मांगो नीता नीत तो दर्शन की करो समाये मैं दर मांगत पिख्या पाए रहा केसर कुसम मृग मैं हरणा सर्व शरीरी चरणा चंदन पगता जोत इन्हें ही सर्वे परमल करणा
कि पट पांडा कहे न कोई ऐसा भगत वरन में होए तेरे नाम निवे रहे लिवलाए नानक तिन दर पिख्या पाए तिलंग महला पहला करती जा ए क्यों कार सतगुर प्रसाद एतन माया पाया प्यारे लब रंगाए निरे संत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सहजे जाए हाँ कुर्बान है जाऊँ मेहरबाना हाँ कुर्बान है जाऊँ हाँ कुर्बान है जाऊँ तिना कह लैन जो तेरा नाव लैन जो तेरा नाव तिना कह हाँ सत कुर्बान है।

चोले रतड़े प्यारे कंस तिना के पास, तूड़ तिना की जे मिले जी साहिब ऐसा रंग नडीत। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंस तिना के पास, तूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण संते पावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला या नड़िए मानड़ा काय करे, आप नड़े कर हर रंगो की ना रावे। माणे सो नेड़े तन कमली है, बहर क्या टूटे है, बैकिया धे तलाइया नैणी पाव का कर सिगारो। सासो हागन जानी है लागी जा सो तरे प्यारो, यानी बाली क्या करे जा तन संत न पावे। करण पला करे बहुतेरे सा तन महल ना पावे, मिण कर माँ की छुपाई है नाही जे बहुतेरा तावे। लब लोभ अहंकार की माती माया माह समाणी, इन्नी बाती सोह पाई है नाही पई कामण यानी। जाए पुछो सो हागणी वाहे किनी बाती सोह पाई है, जो किच करे सो पला कर मानी है, हिकमत हुकम चुकाई है। जाके प्रेम पदार्थ पाई है तो चरणी चित लाई है, सो कहे सो की जय तन मनो दी जय ऐसा परमल लाई है। एव कहे सो आगणी पैणे इनी बाती सो पाई है, आप गवाई है ता सो पाई है, और कैसी चतुराई। सो नदर कर देखे सो दिन लेखे कामण नौ निद पाई, आपने संत प्यारी ता सा सुहागण नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती महज की सहज की माती एहनस पाए समाणी, सुंदर साए स्वरूप बिछखण कही ऐसा सियाणी। तिलंग महला पहला जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो, पाप की जन ले काब लहो, साया जोरी मंगे दान वेला लो। सरम तरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे पर दान वेला लो। काजिया बामणा की गल थकी, अगद पड़े सैतान वेला लो। मुसलमानिया पड़े कतेबा, कष्ट मह करे खुदाए वेला लो। जात सनाती होर हिदा हिदवाणिया, एह भी लेखे लाए वे लालो। खून के सोहेले गाविए, नानक रत का कुंगू पाए वे लालो। साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच आख मसोला। जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेखे वख इकेला। सच्चा सो साहिब सच तपावस, सचड़ा न्याव करेग मसोला। काया कपड़ टुक टुक हो सी, हिदू तान समाल सी भोला। आवन अठ तरह जान सतान, वह होर भी उठती मर्द का चेला। सच की वाणी नानक आखे, सच सुनाई सी सच की बेला। तिलंग महला चौथा कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सब आए हुकम खसमा, हुकम सब वर्तनी। सच साहिब साचा खेल सब हर तनी, सलाहो सच सब ऊपर कर तनी। जिस नाही कोय सरीक किस लेखे हो गनी रहाओ, पौन पानी तरती आकाश कर मंदर हर बनी। विचवरते नानक आप झूठ कहो क्या गनी। तिलंग महला चौथा नित नहफल करम कमाए, बपावे दुर्मतिया जब आने वलवंत कर झूठ, तब जाने जग जीतिया। ऐसा बाजी से सार न चेते, हर नामा खिन मैं बिनते। सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ, सावेला चित न आवे। जित आए कंटक काल ग्रसे, तिस नानक ले छाए जित कृपा कर हृदय वसै। तिलंग महला पंजवा कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद खाक नूर कर दंग आलम दुनियाए। असमान जिमी दरखत आब पैदाई से खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए। दुनिया मुर्दार खुर्दनी, गाफल हवाए रहाओ। गैबान हैवान हराम पुस्तनी, मुर्दार बिखोराए। दिल कब्ज कब्जा का दरो, दोजक सजाए। वली नियामत बिरदरा, दरबार मिलक खनाए। जब अजराइल वसतनी, तब चेकारे विदाए। हवाल मालूम कर दंग पाक अल्लाह, भुगो नानक अरदास पैस दर वेस बंदा। तिलंग कर दूजा महला पंजवा, तुद बिंदु जाना ही कोय, तू करतार करे तो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर प्रार ब्रह्म दातार, तेरी टेक तेरा आधार रहाओ।
है तू हो बनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुझ से है तिनको दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गाए, ज्योति सहसो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिसको बलिहार, तिसकै संग तरह संता, कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की पाछो तूर, तिलंग महला पंजवा करती जा, मेहरवान साहिब मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान, जी सगल को देव दान रहाओ, तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा से जनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार, जिन उपाई मेद ने सोई कर दातार, कट कट मालक दिला का सच्चा परवदगार, कुदरत कीम न जानिए वटावे परवाओ, कर बंदे तू बंदगी जिचर कट मैं सहाओ, तू समरत अकथ अगोचर ज्यो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास, तिलंग महला पंजवा करती जा, करते कुदरती मुस्ताक, दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहा, खिन माहे ठाप उताप दा आचरज तेरे रूप, कौन जाने चलत तेरे अंधियारे में, अंधियारे में दीप, खुद खत्म खलक जहान, अलह मेहरवान खुदाए।

एक करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन किया तिन देखिया क्या कहिए रे पाई आपे जाने करे आप जिन वाणी है लाई रायता प्यारे का रायता जित सदा सुख होए रहाओ जिन रंग कंत न रावया सा पछोरे तनी ताणी हाथ पछोड़े सिर तुणे जब रहण विहानी पछतावा ना मिले जब चूकेगी सारी ता फिर प्यारा रावी है जब आवेगी वारी कंत लिया सुहागनी मैं ते वत भी एहे ते गुण मुझन आवनी कह जी दोस्त करे जिन्नी सखी सह रावया तिन पछियोगी जाए पाए लबो बेनती करो लेगी पंथ बताहे हुक्म पछाणे नानका पौ चंदन लावे गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहया मिलिया कही है रे सोई जे बहुत तेरा लोचिए बाती मेल न होई तात मिले सुन तात को लिव लिवे को तावे गुरु प्रसादी जानिए तो अंतो पावे पाना वाड़ी होए कर खर सार न जाने रसिया होवे मुस्तका तब फूल पछाणे अप्यो पीवे जो नानका परम परम समावे तहजे तहजे मिल रहे अमरा पद पावे तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुर मीत सुनाया बलिहारी गुर आपने गुर को बन जाया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पाव दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मनिया तिन कुमकुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कोहो वारी जिन गुर की चाकरी तिन सब बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख में टणहारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम त्याई दे ते जन परवाना तिन विट्टो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर सेती तिर हड़ी तिना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा ते वेया तिन को कुम जाया ओए आप छुटे पर वार सो सब जगत छड़ाया गुर प्यारे हर से वेया गुर तन गुर तनो गुर हर मारग दस्या गुर पुन वट पुनो जो गुरमुख गुर सेव दे से पुन पराणी जन नानक तिन को बारिया सदा सदा कुर्बाणी गुरमुख सखी सहेलिया से आपे हर पाया हर दरगह पे नाइए हर आप गल लाया जो गुरमुख नाम त्याई दे तिन दर्शन दीजै हम तिनके चरण पखाल दे तूर कोल कोल पीजै पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाया हर हर कदे न चेते ओ चंपंक पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उतारे तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर पेटिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ हो गुर विट्टो सदवारिया जिन रलिया हो गुर विट्टो सदवारिया जिन जितना नाओ सोतन गुरु सा बात है हर देह स्नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुरु तेहा गुर रत्ना अमृत बोलती हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मनिया तिना पुख सब जावी हर का मारग आखिए क्यों पित बिज जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर चले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या से सहा वड दाणे हो सतगुरु को सदवारिया गुर बचन समाणे तू ठाकुर तू साहे हो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे है एक रंग है आपे गौरंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तिलंग महला नोवा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूटे बट जो पानी रहा हर गुण काहे न गावही मूरख अज्ञानी झूठा लालच लाग कै न मरण पछाना अजहु कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे कहो नानक तै भजन ते नै पद पावे तिलंग महला नोवा जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहाँ गाफल सोया जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होया रहाओ मात पिता सुत बंद जन हित जासो कीना जो छुट्यो जब देहता डार अगन मैं दीना
जीवत लो व्यवहार है, जब को तुम जानो नानक हर गुण गाय लय सब सपन समानो, तिलंग महला नोवा हर जस रे मना गाय लय, जो संगी है तेरो अवसर बित्यो जा।

मनोरथ हर आराध कर आराधेसो संतन कै पावे जन की महिमा गीत गवर्णो जो प्रभ अपने पाणे कहो नानक जिन सतगुर भेटिया ते सब ते पए निखाणे सूही महला पंजवा महागण ते तुद हाथ दे राखे पाई पई सदे तेरी सरनाई तेरा भाण माण तान हृदय अंतर होर दूजी आसना दूजी आ जगाई तेरे मेरे राम राय तुद जत आया उभरे तेरी टेक प्रवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाउ अंधकूप ते काढ़ दिए तुम आप पई पवर पाला सार संभाल सर्व सुख दिए आप करे ब्रत पाला अपनी नजर करे

सचे की लिव बरै बख्शे बख्शन हार जियो जिनको अन अन को की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख भुलाया भुल भुल आ वह जाए जियो नदर प्रभु ते छुटी है नदरी मेल मिलाए जियो

ही खा बिना करना किसी न जाई। महापुरखा का बोलना होवे कित बरथाई। ओए अमृत भरी भंडार अमृत भरी भरपूर है, ओना तलना तमाई गुणकारी गुण संग रहे। अबरा उपदेशेन सेवट भागी जे ओ ना मिल रहे अनदर नाम लाई।

अजंत बसै मन आई गुरमुख हर हर नाम जाप नाम जपन हाउ तिन कै बलहारण मन हर गुण सुधार बन रहाऊ।

राम न जपूं कवन मत लागे, मर जाइबे क्यों क्या करो पागे। रहो दुख सुख करके कुटुंब जवाया, मरती वार इकसर दुख पाया। कंठ गहन तब करन पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा। सुही कबीर जी थर हर कंपे, बाला जियो ना जानियो क्या करती पियो। रहन गई मत दिन भी जाए, पवर गए बग बैठे आए। रहो काचे करवे रहे न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। क्वार तनिया जैसे कत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज पतारा। काग उडावत पुजा पुरानी, कह कबीर कथा सिरानी। सुई कबीर जियो अमल सिरानो, लेख देना आए कठन दूत जम लेना। क्या ते खटिया क्या गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। रहाओ करो अरदास गाव किश बाकी, लियो नबीर आज आजू की राती। किश भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह नवाज सराय गुजारो। सास संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ई तूत जन सदा सुले, जन पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया प्या पराया। को कबीर तेई नर पूले, खसम सार माटी संग रूले। सुई कबीर जियो ललत थाके, नैन सरवन सुन थाके। थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सबमत, थाकी एक न थाक समाया। बावरे ते ज्ञान विचार न पाया, बिरथा जन्म गवाया। रहो तब लग पुरानी तीसरी, वो जब लग कट में सासा। जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चन निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चुके तसे प्यासा। हुक्मे बुझे चौपड़ खिले, मन जिन टाले पासा। जो जन जान

सुपुर है मार्ग मेरा शेष फरीदा पंथ सुमार सवेरा सुही ललत बेड़ा बंधन सक्यो बंधन की बेला पर सरवर सब उसले तब तरण दहिला हाथ न लायक संभड़े जल जासी टोला राव एक अपने पतली सो केरे बोला तुद्दा थनी नावी फिर हो।

था ही रव्या आप, आज राजा का वड प्रताप, गुर प्रसाद न हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न हुए सब ताई उठे, सब सुख पाए सतगुरु तुठे, पार ब्रह्म प्रभु पैर खुवाले, जिथे किते दिसे नाले, नानक दास कसम प्रत पाले, बिलावल महला पंजमा सुख निधान, प्रीतम परम मेरे अगंत गुण, ठाकर प्रभु तेरे मोए ना तुमरी सुनाई, कर कृपा हर चरण त्याई, दया करो बसो मन आए, मोए निर्गुण लीजे लड़ लाए राव, प्रभु चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक राही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभु बसे, प्रभु का नाम मन तन धार, बिस्त नाम होत तन शार, प्रभु चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब कम ताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गए सब दुर्मत रीत, मंत्र अंतर हर

हे प्रभु सदी मुक्ता बिलावल महला पंजमा आप पावन आप सदरना आप करावन दोष न लेना आपन बचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना रहो आप ही मस्त आप ही बोलना आप ही असल न जाई छलना आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही कटकट आप ही अलपना आप ही अवगत आप संग रचना को नानक प्रभु के सब जतना बिलावल महला पंजमा पूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वडभागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बसरे हृदय गुर चरण प्यारे रहाओ काम क्रोध लोमो मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना दुख सुख करत जन्म सुनमुआ चन कमल गुर आश्रम दिया अगन सागर बुत संसारा नानक बां पगर सतगुर निसतारा बिलावल महला पंजमा तन मन धन अर्पो सब अपना कवन सुमत जित हर हर जपना करै सायो प्रभु मांगन तुम पेगत सोभा मेरी आंगन रहाओ अनेक ज्योत कर बहुत विचारो साध संग इस मने उधारो मत बुद्ध सुरत नाही चितराई ता मिली जान ले मलाई नैन संतोखे प्रभु दर्शन पाया कौ नानक सबल सो आया बिलावल माला पंजमा मात पिता सुत साथ न माया साध संग सब दुख मिटाया रवरिया प्रभु सब में आपे हर जप रसना दुख ना व्यापे रहो तिखा भूख बहुत तृप्त व्यापया शीतल पय हर हर जस जापया कोट जतन संतोख न पाया मंत्र ताना हर गुण गाया देहु दे भगत प्रभु अंतर जामी नानकी बनंती स्वामी बिलावल महला पंजमा गुरपुरा वड भागी पाइये मिल साधु हर नाम ते आइये पार ब्रह्म प्रभु तेरी सरना किलव काटे पज गुर के चरना रहो अवर कर्म सब लोकांचार मिल साधु संग हुए उधार सिमरत शास्त्र वेद विचारे जपिए नाम जित पार उतारे जन नानको प्रभु कृपा करिए साधु तूर मिले निस्तरिये बिलावल महला पंजमा गुर का शब्द हृदय में चीना सगल मनोरथ पूर्ण सीना समझना कम खुजल कीना कर कृपा अपना नाम दीना रहाओ अंध कुपते कर गोलीना जय जय कर जगत प्रगटीना नीचा ते ऊच ऊन परीना अमृत नाम आदसलीना मंत्र निर्मल पाप जल खीना कौ नानक प्रभु पे प्रसीना बिलावल महला पंजमा सगमल नोट पाइये मीता चन कमल सिंह लाइये चीता हो मलियारी जो प्रभु त्यावत जन्म बुझे हर हर गुण गावत रहाओ सफल जन्म होत बुढ़पागी सत्संग रमे लवलागी मत पत धन सुख सहज नंदा इक नखना बिसरो परमानंदा हर दर्शन की मन प्यासित नेरी पंत नानक शरण प्रभु तेरी बिलावल महला पंजमा मोहे निर्गुण सब गुणों बिहुना दया तार अपना कर लीना मेरा मंतन हर गोपाल सुहाया तर कृपा प्रभु कर में आया रहो भगत बशु पै काटन हरे संसार सागर अब उतरे पारे पतत पावन प्रभु बिद बीद लिखिया परम सो नैनो देखिया नैनो पेखिया साध संग प्रति नारायण नानक दास सब दूख पलायन बिलावल महला पंजमा कवन जाने प्रभु तेरी सेवा प्रभु अवनासी लख पेवा गुण बेअंत प्रभु गैर गबीरे उच्च महल स्वामी प्रभु मेरे तू अंपर ठाकर मेरे राहो एक स्वय नाई को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आप कुछ ना होत पाई जिस प्रभु देवे सो नाम पाई को नानक जो जन प्रभु पाया गुणदान प्रभु ते नहीं पाया बिलावल महला पंजमा मात गर्भ में हाथे राख्या हर छोड़ विख्या फल चाख्या पाज गोविंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए संगारे मूडे तब तन बिंस जाए बेहाल रहो तन मन तन अपना कर स्थापया करन हर एक निमिख ना जापया महा

का तैसा संसार दृष्ट मन सब बिनसिए क्या लगे गवार, कहाँ सो पाई नीते देख नैन पसार, एक चाले एक चाल से सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्त्र हर द्वार, जिन नानक हर का दास रख पैज मरार, बिलावल महला पंजमा लोकन किया वड्याइया बेसंत भागों, ज्यों मिले प्यारा अपना ते बोल करांगों, जां प्रभु ज्यो दयाल होए तो भगति लागों, लपट रहो मन बासना गुर मिल एह त्यागों, रहो करो बेनती अर्थ कनि यो जियो हो मांगो, अर्थ आन सब वारिया प्रया नमक सुहागो, पंच संग गुर के छुटे दोख अर रागो, हृदय पर गास प्रगट पया निस बासर जागो, सरन सुहाग आया जिस मस्तक पागो, को नानक तिन पाया तन मन सीत लागो, बिलावल महला पंजमा लाल रंग तीस को लगा, जिसके वड पागा मेला कदे न होवी ना लागे दागा, प्रभु पाया सुखदाया मिलिया सुख पाई, सह समाना पिगरे छोड़िया ना जाए, रहो जरा मरा ना व्यापी फिर दुख ना पाया, पी अमृत गानिया गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम मोला, कीमत कहीं ना जाइए क्या कै मुख बोला, सफल दस तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तू तेरे दास की नान कुरबानी, बिलावल महला पंजमा राखो अपनी सन प्रभु मोहे कृपा तारे, सेवा कुछ न जानू नीचे मोर खारे, मान करूं स्तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे, रहो हम अवगण करे असंख नित तुम निर्गुण दतारे, दासी संत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे, तुम देवो सब किस दया तार हम अकृत कनारे, लाग बरे तेरे दान से ना चित सिख समारे, तुझ ते बाहर की सुनाही पव काट नहारे, कौ नानक शरण दयाल गुरु ले मुग्ध उधारे, बिलावल माला पंजमा दोष न कहु दीजिए प्र अपना त्याइए, जित सी विस कोए करना मन सोई गाइए, कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा, रहाओ जम ज्यो तू रखो त्यों रहा, वर नहीं चारा ने तरिया तर तेरिया एक नाम तारा, जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सरू समग्री तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा जे ठाकर पावे, होय कृपा दयाल प्रभु नान गुण गावे, बिलावल महला पंजमा मित हसे सर उपरे पशुआ नहीं भूजे, बाद साध हंकार में मरना नहीं सूझे, सतगुरु से वो अपना काहे फिर पागे, देखो संभारंगला काहे भूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन के ताई, मिट्टी से माटी रली नांगा उठ जाई, जाके किए शर्म करे तम बैर बरोधी, अंधकार भज जाएंगे काहे जलों करोधी, दास रेण सोई हो जिस मस्त कर्मा, कौ नानक बंधन छुटे सतर की सरना, मिलावल महला पंजमा पिंगल पर तो पार परे खाल, चतुर बकीता अंधलित रेपन सुजिया कर पेट पनीता, मेहमा साधु संत की सुन हो मेरे मीता, मैल कोई कोट करे मैल कोई कोट अंग हरे, निर्मल पै चीता रहा ऐसी पद गोविंद की कीट हस्ती गीता, जो जो किनो अपनो तिस अभेदान दीता, सिंह बलाई होए गयो तरण मेर दुखीता शर्म कर।

समर्थ गर्भ श्याम नानी की तू टेक प्रतिराधार कर्ण कारण समर्थ प्रव हर पार लावल महला पंजमा सोई मरे दीनहीन जिस प्रभु बसार बसराना करने हार न बुझी आप गणे बिगाना दुख तदे जा

अंबर तो गुण सत बोलती सुनमने पिलाओ ऊहा रस में शांत प्रेरित हुए दिखे जनन बुझाओ जब भगत कर संत मंडली जन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जन धूल मुख लावो उठ त बैठ जपो नावे कर्म कमावो नानी की प्रभेंती हर शरण समावो बिलावन महला पंजमा ए सागर सुई करे जो हर गुण गाए सा संग ते कै संग बसे वड भागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी पर

पाड़ विलावन महिला पंजमा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो फां बन थान चलो छेद पर वेद प्रभ ऐसे पगमान करते देखो प्रभ अपना अंतम की आत्म के रंग जागंते सुपना पला बसिए प्रसंग रहाऊ वर्णाश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप नरेश पंच तत् ठाकर अविनाश ऊस रूप संतन कै वरले जोगीश्वर।

पंचमा जी जंत सुपरस पे देख पर प्रताप कर जुतारिया सतगुरु कर हराप खात खर्चत नहत रहे गुर शब्द खूट पूर्ण पै समग्री कबू नहीं टूट रहाउ साध संग आराधना हर निद पार धर्म अर्थ अर काम।

उनका सतगुर प्रसाद अवर पास त्याग्या दारू नाम लया ताप पासा मिटे रुग रोग शीतल मन पया भरपूर आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया राहु बां पगड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमन मन तन सुखी नानक नर पया डायमन महला पंजमा कर तर मस्तक थावसा नाम दीनो दान सफल शिव सेवा पार ब्रह्म की टांकी नाही महान आपे ही परवराजता परचन की आन जो जो चतरी साध जन के सो लेता मान रहा

बिलावन महला पंजमा मीत हमारे साजना राखे गोविंद नंद कमतक हो गए तम हो ने चंद राव सगल मनोत प्रवतिये पेटे गुरुदेव जय जयकार जगत में सफल जान की सेव ऊंचा पारा गंत हर सब जी जस हाथ नानक प्रभु चरणां गति जत कत मेरे साथ बिलावन महला पंजमा गुरपुरा आराध्या होए कृपाल मार्ग संत बताया तूते जम जाल दुख भूख संसार मिटिया गावत गावत प्रभ नाम सह सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाउ जलन बुझी शीतल पे राखे प्रभ आप नानक पुरुष नांगति जाका वड प्रताप बिलावन महला पंजमा तत्सवारी सफल थान पूर्ण पे गाम पौनाठ पर मिट गया रव्या नित राम साजना के संग बस्त सुख सिज विश्राम साई कड़ी सुलखनी सिमृत हर नाम रहाउ प्रगट पे संसार में फिरते तह नाम नानक शरणांगति कटकट सब जान बिलावन महला पंजमा रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख शांत वड प्रताप चर्ज रूप हर की नींदात गुर गोविंद कृपा करी राखा मेरा पाई हम तिसकी शरणांगति जो सदा सहाय रहाउ व्यथी कदे न होवी जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास बिलावन महला पंजवा मरमा जन्मे दिन बिसरिया जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया अंद रंगराता शांत से सुख आनंद कना पूर्ण प्रयास सुख पाया हर सासन सिमृत सिमृत गुणतास रहाउ सन स्वामी अरदास जन तमी अंतर जामी ना थान थन अंतर रवरे नानके स्वामी बिलावन महला पंजमा ताती भावना लगी पार ब्रह्म शरनाई चौंगर्द हमारे राम का दुख लगे न पाई सतगर पूरा पेटिया जिन बंट मनाई राम नाम औख दिया एक काले बलाई रहाउ राख लिए तन राखन हार साध्याद मिटाई कौन नान कृपा पी प्रतई सहाई बिलावन महला पंजना अपने बाल काप रखियान पार ब्रंग देव सुख शांत सहजानंद पूरन पई सेव राहु भगत जन की बेनती सुनी प्रभ आप रोग मिटाए जवालियन जाका वड प्रताप दुख हमारे बख्शियन अपनी कलतारी मन बासित फल दितियन नानक बलिहारी राग बिलावन महला पंजमा चौप दे दुपदे कर सेवा कार सतगुर प्रसाद मेरे मोन सरमनी

प्रभु के काम क्रोध स्तंते जात तृप्त काई पीक प्रभु दर्शन अमृत हर सुख भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा साथ संत सत संग मिलात बिलावन।

जागृत सरसना लापो कोट जन्म की तृष्णा निवरीरा राम रसैन निवरीरा राम रसैन आत्मतराप चरण गए शरण सुविधा ते गर के बचन जते हर जाप सागर तरे परम पै बंसी को नानक ठाकर प्रताप बिलावन।

तरंक मंदर साज सवारो पावक तले जरावते हे ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावते हे पांच दूत मुंड पर था थासे केसर केसर गए फरापते दृष्ट न आवे अंध ज्ञानी सोयर मद मावते हे जाल पसार चोग विस्तारी पंखी जो फाहावते फाहा वाते कौ नानक बंधन काटे कौमो सतगुर पुरख तिहावत हे।

तेज समायो बुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम खलागो जावड़ पागो स्वाग हमारो कतु न डोली तूपना तूपना गांधन दीपा ओत पोत हंग अंग संग मौली कौ नानक प्रवट वि सुहागन तनी की मेरी बनी कटोली बिलावन महला पंजमा गोविंद गोविंद गोविंद मई जपते पेते साध दियारा तपते दूर धर्मत दूर पई रहाऊ पूर्ण पूर रहो संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम करो तृष्णा अहंकारा तंते हुए सगल खई सत्संग दुख दया धर्म सोच संतन ए मन तलई कौ नानक जन्मन पछाणिया तन को सगली सोज पई बलामन महला पंजमा क्या हम जी जंत बिचारे बरन साके एक रमाई ब्रह्म मिस्त मुनिंद्रा बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई क्या कथी एक

अगम रूप अविनाशी करता पतत प्रत्येक निकज पाइये चरण सुनियो प्रताप पेशले संत चरण चरण मन लाइये कद दीदिये कित संयम पाइये कौसुरजन कित जुगति त्याये राहु जो मनोख मनो की सेवा ओ तिसकी लही लही फुन जाइये नानक शरण शरण सुख सागर मोटेक तेरो एक नाइये जलावन महला पंजमा संत चरण संत टैल करी तंद बंद अर सगल जंजारू अवर काज ते छूट परी रहाउ सुग सहजर कनो आनंदा गरते पायो नाम हरि ऐसो हरस बन सको गुर पूरे मेरी उल्ट गतरी देखो देखो मोन सब के संगे उनका ना कहूँ सरल परी पूर्ण पूरे कृपा निद को नानक मेरी पूरी परी परी बलामन महला पंजमा मन किया कहता हूँ क्या कहता जान परवीन ठाकर पर मेरे तुस आगे क्या कहता रहाऊ अन बोले को तू तुही पछाने जो जीन में होता रे मन का एक हाँ लो डह कह जो पेग तही संग सुनता ऐसो जान पे मन आनंद आन दियो करता कौन आनंगुर पे दयारा हरंग राई कबू लेता लामन महला पंजमा निंद कैसे ही चर परिये निशानी सुन तुम पाई जो काल रपीद गरी गरिये राहु जो देखे शिदर तो निंदक अमाहे पलो देख दुख परिये आठ पैर चितवते आठ पैर चतवे नहीं पहुँचे बुरा चितवते।

नहीं करते कृष्ण किन्ना बल जाओ दर्शन साधु के जी प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकर प्रोसे कहूँ न मानो।

पूरे का जपिया। जाप कहाँ करे कोई बिचारा, पर मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिंह सुख पाया, चरण कम रख मन माही। ताकि चरण पर नानक दास जाति ऊपर को नाही। लामन महला पंजमा, सदा सदा जपिए प्रणाम। जरा मरा कुछ दुख न ब्याते।

बसे साध के संगा रहाओ। खन में था पनवा जे ठाकर नीच कीर्त करे जा राजा जंगा कबू न बिसरे ये मोरे ते नानक दासी दान मंगा बलावन मल्ला पांजमा अचत पूजा जोग गोपाल मंतन अर्प रखियो हर आगे सर्व जिया का है प्रतपाल रहाऊ शरण समर्थ कत सुखदाता कृपा संद बड़ो दयाल कंठ राय राखे अपन को तिसनो लागे ना ताती वाल दमोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना मन तन माल नानक जाचक दास प्रवे मांगे संत जना की मिले रवाल बलावन महला पंजमा सिमरत नाम कोट जतन पई सत्संग मिल हर गुण गाए जिम दूतन को तुरासी त्रास रहाओ जेते पन्हन पन्ह चरण के ऐसे किन्ने मंतन प्रभ के चरण गए आमन जान परमन पो नाठा जन्म जम कलवख दई नरपो हुए पजो जगदीसे ए पदार्थ बड़ पाग लिए कर कृपा पूर्ण प्रभदाते निर्मल जस जा नानक।

ना पाक रहो काड कुठार कसम सिर काटिया खन में हो गया है खाग मंदा चित चित पचिया जिन रुचिया तन दीनों थाग पुत्र मीर तन कुछ नहीं अरे उस छोड़ गया सब सिपाही साग कौन अंक।

कारण रहो। वे सम है संदर पूर्ण सुखदाता सर्व समग्री पोखण भरण थांत नंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण। जी जगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण। आज जगद प्रभु रखदाया सिमरत नानक नहीं डरन। राग मना अबला मन महला पंजमा दुपदे कर अठमा।

मोय अपराधी सन चन रहाउ जो जो किन सो तम जानो पिकठ नहीं किस थी ठीठ मुकरन बड़ प्रताप सुन पर तुमरो कोट अगा तेरु नाम हरन हमरो साल सदा सद भूलन तुमरो बिरद पत उदरन करन करना मैं कृपाल कृपा निध जीवन पद नानक हर दर्शन बिलावन महला पंजमा ऐसी कृपा मोहे करो संत चरण हमारो माथा नैन दास संतूर परो रहाओ वर को शब्द मेरे हृदय बसे हर नामा मन संग तरो तस्कर पंच नवारो ठाकर सगलो परमा को हो जरू जरू जो तम करो सोई पल माने पावन दुविधा दूर टरो नानक प्रथम ही दाते सत्संगत लै मोहो दरो लावन महला पंजमा ऐसी दीख्या जन सो मंगा तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ जन की टहल सुखन जन सो उठन बैठन जन के संगा जन चर चर ज मुख माथे लागी आसा पूर्ण आनंद तरंगा जन पार ब्रह्म जय की निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की तूर पियो मंजन नानक जन्म जन्म के हर अलग जन्म जन्म के हरे एकलंगा बिलावन महला पंजमा ज्यो पावे त्यों मे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता।

राहु अरंकते राहु कर्तखन पीतर प्रमीरु नाथ को नाथ जब तगन में जनाप उदारे कर अपने के रखी हाथ शीतल सुख पायु मंत्र ते हरत सिमरत सबल सर्म सगले साधन दाथ निद निदान नानक सेवा अवर ध्यान सगल कात बिलावन महला पंजमा अपने सेवको कबू न बसारो लागो स्वामी पर मेरे पूर्व प्रीत गोविंद पिचारो राहु सतत पावन पर दर्द तमारो हमरे दुख हृदय मत तारो जीवन प्राण हर संस्वत मी हमे पटल कृपा कर जारो जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारो जन नानक प्यास चरण कमलन तेख दर्श स्वामी सुख सा

प्रीतम हर प्रीतम दुख दर्श गुला मिट गया। सांत सहजानंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया। गुण अवगुण प्रभु कछु न बीजा गुण अवगुण प्रभु कछु न बचारो। कर कृपा अपना कर लिया अतल अतल बड़ाई अचत अविनाशी। नानक उचरे हर उदाहरण राख स्वामी। उचरे हर की जया बलामन महला पंजमा। पैंदन पै पगती तरन कैसे करो अनुग्रह पततर पातत उदाहरण रख स्वामी। आप भरोसे रहाओ सिमर नहीं आपत फैसत मद मावत विख्या राता स्वान जैसे। औद बिहावत दैग दैक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख भंजन पुरख नरंजन साधु संग तरवन जैसे। केशव कलेश नाश अकांग खंडन नानक जीवत दर्श दिते। राग बिलावन महला पांचवा दुख देकर नौ माई खून का सतगुर प्रसाद। आपे मेल लय जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए। रहो ताज मान अरचित ब्रानी साध साधे चरण पे। जप जप नाम तुम्हारे प्रीतम तंते रू कहे। महामुग्ध जान अज्ञानी राखे तर दहे। कौन अनुगर पूरा पेट आमन जान रहे। लामन महला पंजमा जीवो नाम सुनी जपो सुपरसुन पे। गुरपूरे तेरी आस सुनी रहो। पीर गई बांधी मंतीरा मोहे आनंद तुनी। उपजो चाओ मिलन प्रीतम रह न जाए। अनेक पल तेने

चल सखी हम प्रभ प्रबोध है गुण कामण कर हर प्रभ लहैया। भगत बछल उआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे पैया। खिमा सिगार करे प्रभ खुशिया मान दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनया मत मोती चू मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर श्रद्धा सेज बिछाई प्रभ छोड़ न सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किछ की जय सब बाद सिगार फोकट फोट कटैया। कियो सिगार मिलन कहताई प्रभ लियो सुहागण थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करह तेरे वस पैया। दया दीन करो रख ले भयो नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा। मैं मान तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे सरदा मन पूरी जियो चात्रिक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया। रहाओ रोम रोम मन तन इक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया। वैदक नाटिक देख भुलाने मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया। हाओ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यो बिन अमले अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हौ तिस विटो बल बल घुम गैया। अनेक जन्म के विछुड़े जन मेले जा सत सत सत गुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावे मन मुख पर मैया। गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया। कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया। बेसुआ कह घर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया। पूरब जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया। भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया। प्रव्याण आन मेहंदी पीसाई आपे कोल कोल अंग लैया। जिनको ठाकुर कृपा धारी बह पकर नानक कढ़ लैया। राग बिलावल महला पंजवां अष्टपदी घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही। तज आन शरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल अपार। हो जाओ सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे। तज आन कतहे न जाहे हर नाम रसना।

राम। भक्त वचल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम। बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन मीना राम। सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल महला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मानव।

अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगटिया नाम जन नानक नाम आधार हर नाम समाई राम धन हर प्रभ प्यार राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम गुरपुर हर मेलिया हर रस आघाई राम जन नानक नाम विकसिया हर हर लिवलाई राम हम मूर्ख मुग्ध मिलाया हर कृपा धारी राम धन धन गुरु साबास है जिन होमै मारी राम जिन वड भागिया वड भाग है हर हर उर

पवन सुह अवड़ा तत् सुह सुपागी राम प्रभ कर आयड़ा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजे वाजे मत मन की त्यागी बिन मंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बिलावल महला पंजवा भाग सुलखना हर कंत हमारा राम अनहत बाजित्रा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजे वाजे दिन सरैण उमाहा तह रोग सोग न दुख व्यापै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत भगत परे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंझा पार ब्रह्म प्राण आधारा सुन सखिया सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को राभ राम कर प्रेम राभ तिसे पाभ एक निमख

दिवस निर्मल आया, दृष्टधारी मन प्यारी, महादुर्मत नासी, बिनवंत नानक पई, निर्मल प्रभ मिले अविनासी, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम, ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया, एक एक बखाणिया, आत्म पसारा करणहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए, आप करता आप भुगता, आप कारण किया, बिनवंत नानक से ही जाने, जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पांचवां, शांतिक फंकार, सतगुर प्रसाद, सखी आओ सखी, वस आओ सखी, असी पिरका मंगल गाव है, तज मान सखी, तज मान सखी।

सुंदर मोहनी मोहनी महा विचित्र चंचल अनेक भाव दिखावे होए तीठ मीठी मने लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तार हो मैं नाम अंधुले टोहनी मोहे अनाथ प्रिय नाथ ज्यो जानो त्यो रखो चतुराई मोहे नाहेरी जावो कह मुख हो नह चतुर सुघर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप तूप ना नैन बंके जह पावे तह

रखो। मोहे मछली तुम नीर, तुझ बिन क्यों सर, मोहे चात्रिक तुम बूंद, तृप्तो मुख पर, मुख पर हर प्यास मेरी, जिय हिया प्राण पते, लाडिले लाड लड़ाए सब मह मिल हमारी, हुए गते चीत चित वो मिट अंधारे, जो आस चक भी दिन चरे, नानक पयम पै प्रिय संग मेली, मछली नीर ना विसरे, तन तन हमारे भाग करे, आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार, सगला बन हरा हर हरा, स्वामी सुखे गामी, आनंद मंगल रसकणा, नवल नवतन नाहो बाला, कवन रसना गुनपणा, मेरी सेज सोही देख, मोही सगल सहसा दुख हरा, नानक पयम पै मेरी आस पूरी, मिले स्वामी अपरंपरा, बिलावल महला पांचवां, शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखा निद पियो, सुख सागर प्रभ भेटिए, नानक सुखी होत इह जियो, शांत सुख सागर प्रभ पाइय, जब होवे भागो राम, मानन मान वझाइय, हर चरणी लागो राम, छोट सियान चातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम, नानक पौ शरण आई राम राय, थिर होए सुहागो राम, सो प्रभ तज कत लागिय, बिन

नानक प्रभु शरणागति जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम वडपागी मेला वड़ा गुरमुख फिर चीना राम बह पकड़ तम ते काड्या करे अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण प्रभ पा सिमर सिमर नारायण पय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद दे सब इच्छ पुजारी पुजामी राम नानक उदरे जप हरे सभु का स्वामी राम रस भिन्न अड़

जल जल्हे समाया ज्योति जोत नीके राम बिलावल की वार महला चौथा एक वंका सत्क प्रसाद श्लोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गाव्या करनाथ बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उच्चरे हर हर हर उर लिव लाग सब मन सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवे देख हर एक निमक कड़ी मुख लाग।

गाया, हर त्यावो भगतो दिन सरात अंत लय चढ़ाया, जिन सेव्या तिन सुख पाया, हर नाम समाया। श्लोक महला तीजा, दूजै पाए बिलावल ना हो वई, मन मुख थाए ना पाए, पाखंड भगत ना हो वई, पार ब्रह्म पाया जाए, मन हठ कर्म कमावने था।

तेहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए। हर रस पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए। सचो सच दै दिस पसरिया, गुर कह सहज सुभाए। नानक जन अंदर सच है, से जन छपे ना किसै दे छपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाईऐ, जाको नदर करे। मानस ते देवते पए, सच्ची भगत जिस दे। हौं मैं मार मिलायन, गुर कै शब्द सुचे। नानक सहजे मिल रहे, नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावै, की वड्डी वडियाई। हर करतै आप वधाई, सेवक सिख सब वेख। वेख जीवन उना अंदर हिरदै भाई, निंदक दुष्ट वडियाई। वेख ना सकन उना पराया, भला ना सुखाई। क्या होवै किस ही की, चख मारी जा सच्चे स्यो बने आई। जे गल करते पावै सा, नित नित चढ़ै सवाई। सब चख चख मरै लोकाई। लोक महला तीजा, त्रिग एह आसा दूजे भाव की। जो मोहे माया चित लाए, हर सुख पलर त्यागया। नाम विसार दुख पाए, मन मुख ज्ञानी अंधुले। जन्म मरे फिर आवै जाए, कारज सिद्ध न होवनी। अंत गया पछुताए, जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिलै। जो हर हर नाम ते आए, नाम रते जन सदा सुख पायन। जन नानक तिन बल जाए। महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी, जिन मोहया संसार। सब को जम के चीरे विच है, जेता सब संसार जेता सब आकार। हुक्मी ही जम लगदा सो उबरे, जिस बख्शै करतार। नानक गुर प्रसादी एह मन, ता तरै जा छोड़े अहंकार। आसा मनसा मारे निरास, होए गुर सबदी विचार। पौड़ी जिथे जाइए जगत मैं, तिथे हर साई। अग्गे सब आपे वरतदा, हर सचा न्याई। कूड़िया राके मुँह फिटकिए, सच भगत वड़ियाई। सच साहेब सच्चा न्याओ है, सिर निंदक छाई। ना जन नानक सच आराध्या, गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा, पूरे भाग सतगुर पाइए। जे हर प्रभ बस करे, उपावा उपावा सिर उपाओ है। नाओ प्राप्त होए, अंदर शीतल सांत है। हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना पहनना। नानक नाए वडियाई होए। महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन। पाई है गुणी निधान। सुख दाता तेरे मन वसै, हौं मैं जाए अभिमान। नानक नदरी पाईए, अमृत गुणी निधान। पौड़ी जितने पात सहा राजे खान, उपरा उमराव सिकदार है। तितने सब हर के किए, जो किछ हर करावे सो ओए करहे। सब हर के अर्थिये, जसो ऐसा हर सबना का। प्रभ सतगुर केवल है, तिन सब वर्ण चारे खानी। सब सृष्ट गोले कर सतगुर अगे, कार कमावन कौ दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई, देखो हर संतो जिन विच हो। काया नगरी दुश्मन दूत सब मा

केर हर हर किरपाल हुआ भगत जना, ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कप सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी, दुख वरतै दुख आगे। कर्मी सतगुर भेटिए ता साच नाम लिव, ता सच नाम लिव लागे। नानक सहजे सुख होए, अंधरो भ्रम भौ भागे। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाओ मन पाया। गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर ज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरे गवार, मनमुख निर्मल हर राख्या उरतार। भंत नानक सुनो जन पाई, सतगुर सेवियो हम मैं मल जाई। अंदर संसार दुख व्यापे, सिर तंदा नित मार। दूजे पाए सूते कभू ना जागे, माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे, एह मनमुख का विचार। हर नाम ना पाया बैठा जा।

जिसनो हर भगत सच बख्सियन सो सच्चा साहो तिसकी मोहताजी लोक कढ़दा होरत हट ना वच ना विसाहो भगत जना कौ मन मुख हो वह सो हर रास ले विमुख पस पाहो हर के नाम के व्यापारी हर भगत है हर जम जागाती तिना नेड़ ना जाहो जन नानक हर नाम तन लद्या सदा वे परवाहो श्लोक महला तीजा इस जुग में भगती हर तन खटिया होर सब जगत भरम भुलाया गुर प्रसादी नाम मन वसया आंदे नाम ते आया बिख्या माहे उदास है हो मैं सब जलाया आप तरिया कुल उधरे तन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसया सच्चे स्यो लिवलाया ब्रह्मा बिस्न महादेव त्रै गुण भुले हौ मैं मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मुनि भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत ना पाया मनमुख दुखिए सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सेई जन समधे जे आपे बख्स मिलाया महला तीजा नानक सो साला ही है जिस वस सब किछ होए तिसे सरे भो प्राणियों तिस बिन अवर ना कोए गुरमुख अंतर मन वसै।

जगत में कोई मोह थुक ना तिन को पाहे, पराई बखीली करे अपनी, परतीत खोवन सगवा पी आप लखाहे। जिस धन कारण चुगली करे, सो धन चुगली हाथ ना आवे, ओए पावे तिथे जाहे। गुरमुख सेवक पाए हर धन मिले, तिथो कर्महीन ले ना सके, होर थै देश दिसंतर हर धन नाहे। श्लोक महला तीजा, गुरमुख संसा मूल न होवई, चिंता विच हो जाए, जो किछ होए सो सहजे होए, कहना किछु न जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लाइन पन्ने पाए। महला तीजा, काल मार मनसा मने समाणी, अंतर निर्मल नाओ, आंदिन जागे कदे न सोवे, सहजे अमृत प्याओ। मीठे बोले अमृत बाणी, आंदिन हर गुण गाओ, निज घर वासा सदा सोह दे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर धन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासो देवाया, जे किसै कहो।

तरिया सोए नानक जो पावे सो होए पौड़ी पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया गुरपुरै मेहरमान परम पौ मारिया काम क्रोध विकराल दूत सभ्य हारिया अमृत नाम निधान कंठ उर तारिया नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया श्लोक महला तीजा जिनी नाम विसारिया कूड़े कहन कहन पंच चोर तिना कर मोहन हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुरमति हर रस ना जानन जिनी अमृत परम लुटाया बिख स्यो रचे रचान दुष्टा से ती पिर हड़ी जान स्यो वाद करान नानक साकत नरक मैं जम बदे दुख सहन पैये किरत कमाव दे जिव राखे तिवै रहान महला तीजा जिनी सतगुर सेविया तान नितान तिस सास गिरास सदा मन

जब प्रीत न उपजै जन को जन कहा करे बेचारे रहाओ त्रिग तन त्रिग धन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी इस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दे पर पंच झूठ गुमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रे करना रूप रे मन हर भज भ्रम तजो जग जीवन राम रहाओ आवत कछु ना दिसई।

बिलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोबिंद लिव लागी जीवत सुन समान्या गुर साखी जागी रहाओ कासी ते तुन उपजै तुन कासी जाई कासी फूटी पंडिता तुन कहां समाई त्रिकुटी संद मैं पेख्या घट हू घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी आप ते जान्या तेज तेज समाना कहो कबीर अब जान्या गोबिंद मन माना बिलावल चरण कमल जाके हृदय बसे सोता जान क्यों दोले देव मानो सुब सब सुख नौ निद ताके सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब एह मत जाओ सब मह पेखे कुटिल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नर जा मन तो ले देव जह ओह जाए तही सुख पावे माया तासना चोले देव कह कबीर मेरा मन मान्या राम प्रीत कियो ले देव बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सफल जन्म मोको गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना।

प्रसाद हर सोमन रंग जन तू किया तिस को जान अग दरग पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन रंग मंगर वाल हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जी वह प्रभ नाम गौंड महला पंजवा तू पशाव धूप दीप सेवा गोपाल अनक वार बंधन करतार प्रभ की शरण गही प्रसभ त्याग गौर सो प्रसन्न पहि बड़ पाग आठ पहर गाइय गोविंद धन धन प्रभ का प्रभ की जेंद्राउ हर गुण रमत पय आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बखसंद कर कृपा जन सेवा लाई जन्म मरण दुख मेट मिलाई कर्म धर्म हे तत् ज्ञान साध संग जपिय हर नाम सागर तार बोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण कारण राख लिए अपनी कृपा तार पंच दूत भागे विकराल जुआ जन्म न कबहू हार नानक का अंग किया करतार गौंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करी बालक राख लिए गुरदेव प्रभु कृपाल दयाल गोविंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभु दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही खटखट अंतर सर्व समाही अपने दास का हलत पलत सवारे पातत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजी है भगवंत कोट रोग सोग मिटे प्रभ त्याई मन बांझत पूर्ण फल पाए कारण कारण समरथ दयार सरबण दान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गौंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल हुई तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटै बलाई दुख अंधेरा सगला जाई हर गुण गावत तरिया संसार वडभागी पाइय पुरख अपार रहाउ जो जान करै कीर्तन गोपाल तिसको पोह न सकै जमकाल जग मह आया सो प्रवान गुरमुख अपना खसम पछाण हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध में टैं नमाद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट दिए पंडा किए पंडारू मिल सतगुर सब काज सवारू हर के नाम रंग सांगल जागा हर चरणी नानक मन लागा गौंड महला पंजवा भव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाहीं फिर पर मरण हर गुण रमत नाहीं जम पंथ महाविचार पंच दूत मंथ तव शरणाई पूर्ण नाथ जंत अपने कौ दीजै हाथ राउ सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करें वख्याण जोगी जति वैष्णो रामदास मित नाही ब्रह्म अविनाश करण पला करें शिवदेव तिल नहीं बूझे नर अलख फेव प्रेम भगत जस आपे दे जग मैं बिरले गई के मोहे निर्गुण गुण किशु नाही सरबन दान तेरी दृष्टि माही नानक दीन जाचै तेरी सेव कर कृपा दी जय गुरुदेव गौंड महला पंजवा संत का किया संत का लिया तरत बिदारो संत का निंदक आकाश टेटारो संत कौ राखो अपने जी नाल संत उदारो तत्खण ताल सोई संत जी भावे राम संत गोविंद का एक है राकाम राउ संत कै ऊपर देहे प्रभात संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत व्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करहो न कोई जो निंदा तिसके का पतन होए जिस कौ राखै सिरजनहार चख मारो।

सतगुरु प्रसाद चार पुकार है ना तो माने खट भी एका बात बखाने अष्ट दस अष्टि मल एको कहया ता भी जोगी भेद न लहया किं कुरी अनूप वाजै जोगिया मत वारो रे रहाओ प्रथम बसया सत का खेड़ा तृतीय मैं किस पै दतेड़ा द्वितीय अर्धो अर्ध समाया एक रहया ता एक दिखाया एक सूत परोए मणिए गांठी पिन पिन पिन पिन तनिए फिरती माला बहुमित पाए खिंच सूत ता आई गाए चौ जुग मैं चौह मैं एक खट है मट है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया यों किंकुरी अनूप वाजै सुन जोगी कैमन मैं मिठी लागे रहा दूजा राम कली महला पंजवा तागा करके

कलेश जिसते उपजे तिसमें सैं प्रवेश प्रगटे अनूप गोविंद प्रभ पूरे नानक बखशिंद राम कली महला पंजवां गऊ कौ चारे सारधूल कौडी का लख हुआ सो मूल बकरी कौ हस्ती प्रतपाल अपना प्रभ नगर निहाले कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे वरुण न साको बहुगुण तेरे रहाऊ धीस्त मास न खाई बिलाई महाकसाब छुरी सटपाई कर्णहार प्रभ हृदय बूठा फाथी माछली का जाला टूटा सूके काष्ठ हरे चलूल ऊच थाल फूले कमल अनूप अग्न निवारी सदगुरदेव सेवक अपनी लायो सेव अकृत घणा का करे उधारू प्रभ मेरा है सदा दयारू संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवां पांच सिंह राखे प्रभ मारू दस बघ्याड़ी लई निवारू तीन अवर्त की चूकी केर साध संगत चूके पै फेर सिमर सिमर जीवा गोविंद कर कृपा राख्यो दास अपना सदा सदा जा साचा बखशिंद रहाऊ दाज गए तृण पाप सुमेरो जप जप नाम पूजे सब प्रभ पैरू आनंद रूप प्रगटो सब थान प्रेम भगत जोरी सुख मान सागर तरियो बाशर खोज खेद ना पायो नह पुनरोज सिंध समायो घट घट के माही करण हार कहो किस अचार्य नाही जाओ छूटो तो जाय पयाल जाओ काढ़ो तो नदर निहाल पाप पुन हमरे बस नाही रसक रसक नान गुणगा राम कली महला पंजवा ना तन तीरा ना मन तोही माया मोहे अभ्यापै तोहम करेगा डर ज्यों सेल अचिंत जाल काल चकर पेल हर चरण कमल सरनाई मना राम राम राम नाम जप संग साई गुरमुख पावे साज तना राव ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे बिखे विकार जी रह कह ताई संग गाफुल संग न तसुआ जाई धरत तोहो अनक छल जानै कौडी कौडी कौ सा खाक सर छानै जिन दिया तिसै न चेत मूल मिथ्या लोभ न उतर सूल पार ब्रह्म जब पहे दयाल इह मन हुआ साधरवाल हस्त कमल लाड़ लीनो लाई नानक साचै सा समाई राम कली महला पंजवां राजा राम की शरण आई निरपौ पहे गोविंद गुण गावत साध संग दुख जाई राऊ जां कै राम बने बसै मन माही सो जान दोतार पेखत नाही सगले काज सवारी अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै सो दास निसा काही करै जन्म जन्म की चूकी कारण पूरे गुरु पर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल जो सो दर्शन पाए जिस होई दयाल पाव ब्रह्म जिस कृपा करै साध संग सो भव जल धरै अमृत पीवो साध बिहारी मखूजल सच दरबारी आनंद करो तज सगल विकार नानक हार जप उतरों पार राम कली महला पंजवा इंदन ते बसंतर पाग माटी कौ जल दै दिस त्यागै उपर चरण तले आकाश कट मैं सिंध की प्रगास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमख न विसरै जी कौ सा जी भगतन का आठ पहर मन तां को जा प्रहाऊ प्रथमे माखन पाछ दूध मैलू कीनो साबन सूद पै ते निरपौ डरता फिरै हुंदी कौन हुंदी रै देही गौतम देही दिसै सगले साज करत जग दिसै ठगण हार अन ठगदा ठगै जिन वखर फिर फिर उठ लागै संत सभा मिल करहुं बखियाणु सिमरत शास्त्र सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोए नानक तां की परमगत होए राम कली महला पंजवां जो तस पावै सो थिया सदा सदा हर की सरनाई प्रभ बिन नाही आन बिया राऊ पोतक लतर लखमी दिसै मान महे किशु ना संग लिया